सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: रेडियो रिमझिम सुनो दिल से। डॉक्टर अनंत राठी जी, बीकानेर राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकता
1: है? हाँ, बात ये समझनी है कि उसकी जो मानसिकता है वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है, मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है, वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवरथिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं, तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे, जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दे भगवान की स्तुति कोई, ये दवा के साथ अगर आप दो, और उसको समझाने की चेष्टा करो, भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, और वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा? आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बल, तुम रामायण देखो, आधा घंटे रामायण देखो, आधा घंटे महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसारिकता से थोड़ा अध्यात्मिक की तरफ तो झुके। अब उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, हमारी बात ना मानो तो हमारे पास रहो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, बात मानना। तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा।
0: हर जी, ओवर थिंकिंग में अभी हम एक जने से बात कर रहे थे, उसको भी यही वो था, तो भय का बहुत वो रहता है हर जी, हर चीज का भय, वो मतलब बार बार कह रहा था मुझे डर लगता है, ये दवाई से डर लग रहा है।
1: देखो, डर लग रहा है, अपने द्वारा कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम प्रकट नहीं करते, जिनका कोई दंड नहीं मिलता, वो बुद्धि पर, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, समझ रहे हो ना? सबसे पहले जो हमें दंड मिलेगा भागवतिक, वो बुद्धि पर मिलेगा, कैसा हो गया, कैसा हो गया। अब वो ऐसा भयभीत होने लगा कि बिना कारण के भी भयभीत हो रहा है, वो काल्पनिक भय पैदा करके भयभीत होता चला जाता है, और उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है। अब उसको कोई प्यार देने वाला, कोई समझाने वाला, अगर उसको समझाने की भी चेष्टा करे तो नहीं समझेगा। उसके लिए एक ही दवा है, नाम, विश्वास मान लीजिए, ना ठीक हो जाए तो हमसे बताइएगा।
0: अरे जी, आपके जो शरणागत भक्त के लक्षण आप बताते हैं, निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत और विपरीत भावनाओं को त्याग, इससे सारे लक्षण उससे विपरीत दिख रहे थे। हाँ। वो शंका कर रहा है, वो शोक कर रहा है, वो अनिश्चिंत है।
1: हाँ। अब जैसे मान लो आप कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन आपने वीरपात किया, उसमें एक बच्चा होने की सामर्थ्य है, अगर वही गर्भाशय में पहुंच जाता तो बच्चा होता ना, तो एक बच्चा की हत्या हुई ना, लाखों पाप हो रहे हैं, लाखों अपराध बन रहे हैं, ये सब करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसको खिलवाड़ समझते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कि 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार करो, गृहस्थी में जाकर संतान उत्पत्ति करो, धर्म पूर्वक चलो, अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी को भगवान मानो, दोनों प्रेम से रहो, एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत, ये सब क्यों कहा गया है? पाप आचरण, मनोरंजन, तो भी भोगो, कुछ दिन बाद मनोरंजन का फल अपने आप आ जाएगा कि आपका दिमाग ही आपको दंड देने लगेगा। अपने हाथ से अपना गला काट रहे हैं लोग, अपने हाथ से अपने को फांसी में चढ़ा रहे, अपने हाथ से जहर खा रहे, ये क्या हो रहा है? इतना दुर्लभ मानव दे और आप इस तरह नष्ट करें, उसका कारण है आपका गुप्त पापाचरण। पापाचरण होने के कारण हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती। अगर शुद्ध बुद्धि हो तो मानो जैसे हम फेल हो गए, तो पहली बात तो शुद्ध बुद्धि होने पर फेल होगा ही नहीं, क्योंकि अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा। अब वो डिस्टर्ब है पहले ही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्यसन ये वो कई ऐसी बातें होती है जिनका लौकिक चिंतन करते करते वो और उतने में हो गया फेल। अब सोचा घर वाले डांटेंगे और मेरी स्थिति क्या स्थिति, तो ऐसे कई हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, व्यापारी हैं, जो अपने को असमर्थ असहाय असफल समझ करके, और ऐसा करने नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये तभी रुकेगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। तभी तो देखो सबको प्रातःकाल उठने की आज्ञा हमारे ऋषियों को है, सबको अर्घ देने की, चाहे जिस कुल का हो चाहे जिस, सबको सूर्य भगवान का आदर करने की और सबको नाम जप करने की, अपने यथायोग्य अधिकारानुसार मंत्र जप करने की। अब देखो गायत्री मंत्र का जो आखिरी अर्थ है वो परम सत्य है, मेरी बुद्धि को प्रसूदयात सत्य की तरफ प्रेरित करे। पूरा मंत्र तो हम नहीं करें क्योंकि अधिकारानुसार कहा जाता है, वो परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करे। प्रातःकाल उठकर प्रार्थना तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने के कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर, मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। देखो आज भी बीमार स्थिति शरीर की है, हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा टहले फिर बैठ गए, 1 बजे शौच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में, 2 बजे क्या, 2 बजे के 10 मिनट कम,
0: 1:50 पे आने,
1: हाँ, और फिर देखो सब दिनचर्या चल रही है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो, जिस डिपार्टमेंट में हो, बोले बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो, जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे हो मन तुम्हारा शैतान हो मार देगा। तो जो डिप्रेशन में उनको कोई कार्य बताओ उनके अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार कि कोई भी कार्य कर ले, मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा कार्यरत होना जरूरी है। बेकार आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और क्या जाएगा। और नाम जप करें और उसको बौद्धिक स्तर से पुष्ट करो, थोड़ी देर उसको आध्यात्मिक बातें बताओ, थोड़ी देर उसकी उसे बातचीत करके समझो कि इसकी दशा कहाँ डाउन हुई है, किस जगह है, ये डिप्रेशन का इसका कारण क्या है। तो विचार शक्ति ही हमको महान बनाती है, विचार शक्ति हमको नीच बनाती है। हमारे अच्छे विचार होने के लिए विवेक की जरूरत है, विवेक मिलता है सत्संग में, बाजार में नहीं मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से आप खुद इतने बलवान बनो कि आप संकल्प करो, नाम जप करो, हमारी बात मानो और उसको संकल्प करो सामने आए हुए मरीज के कि मैं अपना नाम जप इसको देता हूं, और उसे कहो नाम जप करो, तो तुम्हारा जो नाम जप, मान लो 1,000 नाम जप दिया तो वो दान करने का तुम्हें 10,000 नाम का फल मिलेगा। समझ रहे हो, मैं अपना 1,000 नाम कैसे दे, तो 1,000 दिए तो पलट कर 10,000 आपका फायदा जो होगा ना, वो 10,000 नाम का फायदा हो और उस जीव का उत्थान होने लगेगा। तो आप भी नाम जप कीजिए और उसके विचारों को पढ़िए और उसको आध्यात्मिक में धीरे से लाइए और भगवान का बल उसे दीजिए, तभी पुष्ट होता, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा। एक समस्या है, हजारों समस्या है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को सब है, बेटी ब्याह के योग्य है, पैसा नहीं है। बेटी का ब्याह करने के लिए वो आया ना तो लड़का वाला ऐसा रईसी दिखाएगा, मुझे कार ही चाहिए। अरे चाहिए कि तुम अपनी बेटी दे रहे हो, बस हमारे लिए पर्याप्त है। कितनी समस्याएं ऐसे गृहस्थों के पास, ऐसे लोग, सब व्यवस्था हो गई है, अब बेटी का जहां ब्याह किया, खूब धन खर्चा किया, लड़का बेकार में निकला। कितनी समस्या है, संसार समस्याओं का पुंज है। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो बहुत जीवन बेकार है, बहुत जीवन बेकार है। इसलिए सबको चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। अभी एक रास्ते में देखा था, जब हम अपने लोग आ रहे थे तो रोक के बात किए थे, कह रहे थे 5 मिनट 1 घंटे में और 24 घंटे में 24 मिनट, सिर्फ इतना। मैं अभी कुछ दिन हुआ शुरू किए, मुझे बहुत आनंद है महाराज जी, मेरा जीवन बदल गया, ऐसा वो रोक के कह रहे। हाँ रोक के कह रहे, तो उसमें जो सुबह हम आते हैं ना उसमें बात मान लो, अगर नाम जप शुरू कर, अच्छा नाम जप में पैसा नहीं लगता, आपको ये नहीं कह रहे कि नहा के नाम जप करो कि भाई 4 बजे आप स्नान करो, ऐसा भी। और आजकल स्नान में कौन सी बड़ी ऊंची बात है कि भाई गंगा जी यमुना जी नहाने जाना, अपने बाथरूम में बंद करो, स्नान कर लो, फिर आराम से बैठ करके भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। घंटा 2 घंटा अगर नहीं कर सकते तो 24 घंटे में 24 मिनट तो कर लो, और मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, फिर देखो जीवन कितना उज्जवल और आनंदमय होता है जी। ऐसा समझाओ भाई, समझाने से ही है, और बिना नाम जप के वो समझ भी नहीं पाएगा। नाम जप होना अनिवार्य है। नाम जप बहुत बड़ी अमृत शक्ति है, अमृत शक्ति है सर। गुरुवाणी में नाम जप और साधु सेवा दो की बहुत महिमा लिखी हुई है। जितने दसों गुरु हुए हैं सबके वाणी को पढ़ के देखा, केवल नाम जप, नाम जप की महिमा। अपने महापुरुषों को जितने देखो सब नाम नाम, कबीर जी, रामानंद स्वामी और जितने भी बड़े बड़े संत हुए सब नाम से हुए। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में तो सो, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के तो उच्च। इसको फंसाना है, हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ, जहां कार्य से हटे तो राधा राधा राधा राधा राधा राधा, फौरन लगाओ इसको, फिर कार्य में लग गए फिर भूल गए कोई बात नहीं, फिर याद आया फिर राधा राधा राधा राधा, इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं ऐसा चिंतन करता बहुत ही दुष्ट है, यो गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं, इसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको देखो, इसकी चाल देखो, जहां शांत हो वो चल पड़े अपनी चाल पर। कोई व्यक्ति लाएगा, कोई वस्तु लाएगा, कोई घटना लाएगा, कोई भोग लाएगा और उसी के चिंतन कराएगा, हमारे पावर को नष्ट करता जाएगा। जो हमें मनुष्य शरीर में पावर मिला है, चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है और चिंतन के द्वारा ही पावर नष्ट होता है। असत चिंतन के द्वारा पावर नष्ट होता है और सत चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ाने वाला चिंतन कोई बिरला ही करता होगा, नहीं पावर नष्ट करने वाला ही चिंतन होता है। कहीं किसी व्यक्ति से राग, कहीं किसी व्यक्ति से द्वेष, कहीं कोई घृणात्मक बात, कहीं कोई ऐसी, और वो सब दिमाग में भर रही है और दिमाग को कमजोर करती चली जा रही। आप जब शयन करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो आप अपने को बलवान महसूस करते हैं, इंद्रियों को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे चिंतन रहित सो गए, 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ, इसलिए आपकी इंद्रियों में बल आया। यदि 6 घंटे आप भगवान के चिंतन में संसार को भूल जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। ना सत ना असत कोई चिंतन नहीं हुआ नींद में, तब आपको लगा हा आज मैं बहुत आराम से सोया, और एक मतलब फ्रेश अनुभव होता है क्योंकि चिंतन छूटा। अगर आदमी को नींद ना आए तो आदमी परेशान हो जाए, क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं रुक रहा, उसको चिंतन रोकना है। अगर हम वही चिंतन नाम के बल से रोक दें, राधा राधा राधा, तो 6 घंटे ना सोए भी तो भी आनंद बना रहेगा। 1 मिनट दिन में नहीं सोते, रात्रि में 8 से 11 ये समय शयन का है। अब इसमें जो आ गई सो आ गई, राधा राधा राधा राधा राधा। तो हमारा चिंतन का ठिकाना तो होना चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। जैसे जलजहाज का पक्षी है, उड़े कितना भी उड़े, उसका ठिकाना वही जलजहाज में आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन कितना भागे, एक ठिकाना तो होना चाहिए। अब आपके मन का ठिकाने नहीं है, वो सोचता ही चला जा रहा है, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे? एक ठिकाना रखो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राधा राधा राधा। उड़ा मन, गया संसार में, संकल्पिक फिर आया, राधा राधा राधा, फिर उड़ा, आप बच जाओगे। नहीं, उस संसार का चिंतन करते करते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आप पतित हो जाएंगे। आप देखो, जो ठीक से चलते हैं उनका अलग जीवन होगा, जो पतित चलते हैं वो थोड़े दिन के लिए आपको प्रकाशित दिखाई देंगे लेकिन बहुत बुरा फ्यूज होंगे, बहुत बुरा वो पतित होंगे। गंदे आचरण करने वाला कभी उन्नतिशील नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा धनी दिखाई दे। खोखला होता है अंदर से, जैसे लकड़ी है ना, घुन लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से अच्छा दिखाई देता है, अंदर से खोखला होता है। धर्मात्मा पुरुष बाहर से भले कम पैसे वाला दिखाई दे, बाहर से वो अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन वो चमकेगा। और जो अधर्म वाला होता है, बाहर से भले चमक रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा, पक्का समझ लीजिए।

0: रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: प्रातःकालीन बेला में हम लेके आ गई बनी कुछ असरकारी और अचूक नुस्खा। आ कार्यक्रम तरुआ पता ही बा, आपन दे आपन देखभाल।

दोस्त दीपाली के स्वीकार करी स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। तो दोस्त लोग चली शुरुआत करी हम आज के प्रोग्राम के। आप बताई रुआ स्वास्थ्य का दिन कुछ घरेलू नुस्खा। तो सबसे पहले हमने के जानल जाई इस सुहाना मौसम में सुंदर त्वचा खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। दोस्त लोग हमने के संपूर्ण त्वचा रोम छिद्र द्वारा निर्मित होला। त्वचा प्रतिपल ई छिद्र के माध्यम से बाहर के वातावरण के संपर्क में रहेला व ऑक्सीजन विटामिन आदि के पूर्ति करत रहेला। शरीर में कई प्रकार के रासायनिक तत्वों की पूर्ति त्वचा द्वारा ही होला, जिसमें प्रमुख विटामिन डी सूर्य द्वारा, ऑक्सीजन हवा द्वारा, मैग्नीशियम मैग्नीज धूलकण द्वारा, लोहा जिंक ब्रोमीन मिट्टी द्वारा। बारह तरह के रासायनिक तत्व जल द्वारा स्त्री व पुरुष के त्वचा में अंतर होला और ये अंतर के कारण हार्मोन के स्त्राव में परिवर्तन होला। मेलोनिन के स्त्राव त्वचा के सुंदर व मुलायम बनावे खातिर जिम्मेदार होला। त्वचा के आसान उपाय द्वारा चिकना व सुंदर बनावल जा सकेला। त्वचा खातिर ऑली ऑयल सबसे फायदेमंद तेल है। करे पर ई तेल सीधे आंतरिक त्वचा में जाके वहाँ उपस्थित तेल ग्रंथि के स्त्राव के बढ़ावेला, फलस्वरूप त्वचा धीरे धीरे मुलायम व स्वस्थ होखे लगेला। कच्चा सलाद के ऊपर हल्का ऑलिव ऑयल डाल के मक्खन की तरह इस्तेमाल करे पर सीधे पेट में जाके वहाँ के पीएच वैल्यू के संतुलित करेला और त्वचा के स्वस्थ बनावेला। तिल की आग पर पकावल जाला तो ओई में उपस्थित विटामिन ई नष्ट हो जाला। जबकि यह विटामिन ई त्वचा में कसाव पैदा करेला, यही से कच्चा ऑलिव ऑयल अधिक फायदेमंद होला। अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग त्वचा के नुकसान पहुंचा सकेला। शरीर पर ऑली ऑयल, गंधक नीम, चंदन व नमक से तैयार कैल गयल मिट्टी के लेप त्वचा के ऑक्सीजन दर बढ़ा के त्वचा में कसाव पैदा करेला।

त्वचा पर मिट्टी के लेप सबसे स्वस्थ व सुंदर उपाय है। हमेशा ताजा व गुनगुना जल से नहाए पर शरीर के 12 प्रकार के रासायनिक तत्व प्राप्त होला। पानी में उपस्थित हानिकारक रासायनिक तत्व के त्वचा स्वयं बाहर कर देवेला या शरीर ओके पसीना के द्वारा बाहर निकाल देला। स्नान से पहले घर्षण स्नान त्वचा के रोम छिद्र के खोल के ओके सशक्त व मजबूत बनावेला। ताकि स्नान करे पर त्वचा द्वारा पानी अधिक मात्रा में अंदर जा सके। तौली से शरीर के पोछे के ना चाहिए, शरीर के पानी ऐसे ही सूखे दी ताकि त्वचा पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी ले सके। आयरन युक्त आहार खून में लौह तत्व की मात्रा बढ़ा के त्वचा के कोमल बनावेला। आहार में फल व कच्चा सब्जी सबसे फायदेमंद है, जैसे चुकंदर, गाजर, लीची, शहद, खीरा,

सुंदर त्वचा खातिर कुछ उपाय। तो चली अब बता दी कि भोजन में पौष्टिकता कैसे बढ़ा सकत हनी। हमनी के खान पान के लेके का कुछ नई खीसन करत, लेकिन वास्तव में जरूरत ई बात के अधिक होला कि हम जौन कुछ प्रतिदिन सेवन कर रहल बानी ओके पौष्टिकता बढ़ावे के जतन करी। चलिए हम कुछ ऐसा रोचक तत्व बतावे जात बानी जौन हमनी के भोजन के पौष्टिकता और स्वाद दोनों के बढ़ा सकेला। सेहत और सुंदरता दोनों खातिर ई जानकारी बहुत उपयोगी बा। दोस्तों कारोवे जानतनी कि खाए पिए के चीज में शुगर के कितना मात्रा होके के चाहिए। दो सौ मिलीलीटर कोला में लगभग 22 ग्राम शक्कर होला, जबकि इतना ही चॉकलेट सोया मिल्क में 10 ग्राम शक्कर होला। मार्केट में मौजूद स्पोर्ट्स ड्रिंक के 200 मिलीलीटर कप में 21 ग्राम शक्कर होला। शुगर से मीठी चाय के 200 मिलीलीटर मात्रा में 21 ग्राम शक्कर होला। अलसी में घुलनशील और अघुलनशील दो तरह के फाइबर होला। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होला। इसे खाए में कई तरह से प्रयोग कई जाला। मोदी में मिक्स करके पी या पाकल होकर सब्जी में डाल के बनाई, आटा में मिला के एक रोटी भी बना सकता नहीं। शहर के अच्छा अच्छा स्टोर्स में सोया मिल्क आसानी से मिल जाला। ई फ्लेवर वाला और ई बिना फ्लेवर वाला के भी मिलेला।

0: 200 मिलीलीटर सोया मिल्क में 80 कैलोरी और लगभग 6.6 ग्राम प्रोटीन होला। खाना कुक करते समय कुछ बात के ख्याल रखी। मीट के धीमा धीमा और कम आंच पर पकाई। कोशिश करी कि स्टीम करके पकाए जाए वाला चीज के फ्राई ना करी। डाइट संबंधी ऐसा टिप्स रवा के जौ रखे में मददगार हुई। ब्रेकफास्ट में साबुत अनाज के जरूर शामिल करी। इनमें पॉलीफिनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होला। पॉपकॉर्न के ई मामला में काफी स्मार्ट मानल जाला। इनमें दूसरा प्रोस्टेड स्नैक्स जैसे चिप्स के तुलना में 5 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट पावल जाला। महिला लो अक्सर घर के कामकाज में अपन सुबह के नाश्ता भूल जाला लो, लेकिन ऐसा कैल ठीक नहीं के। जे लोग सुबह के नाश्ता ना करे के रूटीन बना ले बा, वो लोग में टाइप 2 डायबिटीज के आशंका अधिक हो जाला। तो ऐसे अपना दिनचर्या में सुबह के नाश्ता जरूर शामिल करें। तो दोस्त लोग अब घड़ी के सुई कर रहल बा इशारा कि हम ली रउआ से जाए के आज्ञा। वादा के साथ कि फिर होई हमार भेंट काल कुछ दूसर नुस्खा के साथ। तब तक रखी रहुआ अपन सेहत के ख्याल। आज सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया। घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार। कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70705763100 या 70705742100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30-92 या 90765-65750।

अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हाल चाल विस्तार से। अमेरिका और ईरान युद्ध में गोपालगंज जिले के थामे प्रखंड का एक युवक भी अपनी जान गंवा बैठा। बताया जा रहा है कि दुबई में हुए ईरानी हमले का शिकार गोपालगंज का यह युवक हो गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। थामे के व्यवसायी और भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय गुप्ता का पुत्र सोनू कुमार गुप्ता कुछ दिनों से दुबई में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ईरान के द्वारा चलाए गए मिसाइल से सोनू कुमार गुप्ता की मौत हो गई। सोनू कुमार गुप्ता जहाज पे ड्यूटी करता था और बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के जलडमरू मध्य में हुए शिप पर ईरान के द्वारा किए गए हमले में सोनू की मौत हो गई। सोनू जिस जहाज पे काम करता था वह जहाज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था। इसी बीच ईरान के तरफ से मिसाइल हमला कर दिया गया और इसी मिसाइल हमले में सोनू की मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार में हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल परिवार के लोग अब स्थानीय प्रशासन और सरकार से सोनू के शव को सुरक्षित मंगाने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से इस गांव में सन्नाटा पसरा है और लोगों में मातम दिखाई दे रहा है। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर तमाम पदाधिकारियों ने कई क्षेत्रों में लगातार बैठकें की। वहीं जिला पदाधिकारी ने भी आज कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज तथा अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ ने जिले के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर खाद्यान्न वितरण, जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, उचित मूल्यों की दुकानों के निरीक्षण और RC टैगिंग शिकायतों के निष्पादन एवं सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा करते हुए प्रखंडों में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा लाभुकों को निर्धारित मात्रा में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कम प्रगति वाले क्षेत्रों की अलग अलग समीक्षा करते हुए DM ने आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में पैक्सवार एवं प्रखंडवार लक्ष्य खरीद की उपलब्धि, किसानों की भागीदारी, CMR डिलीवरी तथा शेष लंबित कार्यों की भी समीक्षा हुई। DM ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, मिलरों एवं पैक्सों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। इधर जिलाधिकारी ने कृषि टास्क फोर्स की भी बैठक की। बताया जा रहा है कि जिला टास्क फोर्स की भी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान धान अधिप्राप्ति से संबंधित प्रखंडवार प्रगति, पैक्सों की कार्यप्रणाली, किसानों के निबंधन, धान खरीद की स्थिति तथा 100% लक्ष्य प्राप्ति को लेकर विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी प्रखंडों को उपलब्धियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इधर जिला पदाधिकारी ने जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर भी बैठक की। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के साथ हुई इस बैठक में आंगनवाड़ी केंद्र बरौली में आंगनवाड़ी दीदियों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गयी। जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन राजेश्वरी पांडे ने डुमरिया घाट बांध एवं गौसिया बांध का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ सुरक्षा से संबंधित तैयारियों, तटबंधों की स्थिति तथा संवेदनशील स्थलों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शाहनवाज खान, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल साजिद इकबाल, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपर समाहर्ता को बताया कि सारण तटबंध एवं सहायक शर्कीय वर्तमान में पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगातार निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है। संवेदनशील स्थलों पर नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी सुनिश्चित की गई है।
डीएम के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक तथा ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान डीडीसी महोदय ने विभिन्न जन कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य बिंदु एवं समीक्षा की गई। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी बैठक हुई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई और छूटे हुए लाभार्थियों के शौचालय निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और इसके तहत गाँव में घर घर दैनिक कचरा उठाव के स्थिति पर भी समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने धावा दल के माध्यम से आज कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें बताया जा रहा है कि जायका बिरयानी जो स्टेशन रोड गोपालगंज में है, वहां से भी एक बाल श्रमिक एवं एक बबलू मटन दुकान जो स्टेशन रोड में है, यहां से भी एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी और तमाम पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। थामे और सिधवलिया तथा सदर के भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी रहे। जहां से बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है, उन संस्थानों पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तत्काल बाल श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने कृषि टास्क फोर्स की बैठक में किसानों को समय पर कृषि संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति पर विस्तृत रूप से जानकारी ली। बैठक में जिला पशुपालन अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। कुचायकोट थाना कांड संख्या 249 2022 के मामले में आज अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा सुना दी। साथ ही 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि 2022 में बलतरी चेक पोस्ट पर कुचायकोट थाना की पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक कार से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम चरस बरामद किया था। यह चरस नेपाल के तरफ से तस्करी के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई, वह हरियाणा के हिसार का रहने वाला शिव कुमार बताया जा रहा है। लगभग 4 वर्षों से अदालत ने इस एनडीपीएस के मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आज फैसला सुना दिया। इसमें जिला अभियोजन पदाधिकारी ललन द्विवेदी ने, जो एनडीपीएस के स्पेशल पीपी के रूप में इस मामले में अपना पक्ष रख रहे थे, उनके दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20B2C एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया और आरोपी को 10 वर्ष कैद तथा 1,00,000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ने 1,00,000 रुपए का अर्थ दंड जमा नहीं किया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। आज भोरे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खजुराहा स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास स्मैक जैसे मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने वहां छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। पूछताछ के दौरान अवैध मादक पदार्थ कारोबार से जुड़े नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला एवं अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इसमें भोरे पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद इसमें संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि सर्वप्रथम जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई, उसका नाम बीरबल प्रजापति, पिता राम किशुन प्रजापति, जो संसार बंतरिया थाना भोरे का निवासी है। उसके पास से तलाशी लेने पर 14.71 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया, जिसे जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने बताया कि वह इस मादक पदार्थ को गणपति आयरन स्टोर के संचालक अशोक सिंह, पिता रामजी सिंह, जो भोरे के लामी चौर का निवासी है, वहां से खरीद कर लाया था और बिक्री कर रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने वहां भी छापेमारी की और अशोक सिंह को भी गिरफ्तार किया। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के ब्रह्माइन गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक नंदू कुमार बिजली के पंखे का प्लग लगा रहा था, इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मामले में पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजनों ने उसकी जान बचा ली। वह फांसी से लटक गया था, परंतु तभी परिजन तुरंत देख लिए, जिसके वजह से उसको फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि युवक का उसके अपने ही भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी को लेकर घर में सुबह से ही झगड़ा और मारपीट हो रहा था और इसी से नाराज होकर युवक ने फांसी के फंदे पर झूल कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु परिजनों ने बचा लिया और फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। और पुलिस इस मामले में घायल युवक नरेंद्र सिंह से पूछताछ कर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। आज गोपालगंज शहर में नगर परिषद ने खुले में मांस मछली बेचने वालों पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलाकर खुले में मांस मछली के दुकानों को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई जादोपुर रोड, हजियापुर और कई स्थानों पर की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, अब बिना लाइसेंस के खुले में मांस मछली की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोरे थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के एक आरोपी कामेश्वर मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी विजयपुर थाना क्षेत्र के बलपुर पटजोली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर थावे थाना की पुलिस ने 557 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम हसमुल्लाह खान है। यह मुमताज खान का पुत्र है और मिरलीपुर थाना थावे का रहने वाला बताया जा रहा है। यह एक्सयूवी गाड़ी से शराब ला रहा था। पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है। गोपालगंज सदर अस्पताल में रात की हुई बारिश के बाद से पूरा परिसर जलमग्न हो गया था। अस्पताल का मुख्य मार्ग पानी से भर जाने के कारण झील जैसी स्थिति हो गई थी। अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उचका गांव थाना की पुलिस ने भी 333 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक मारुति सुजुकी वाहन को भी जब्त किया गया। पकड़ा गया आरोपी चंदन प्रसाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी सुतिब कुमार उर्फ राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह सिद्धवलिया के ही परसौनी गांव के वीरेंद्र महतो का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर छल कपट अथवा विवाह का झूठा प्रलोभन देकर यौन संबंध स्थापित करने का एक मामला दर्ज है। युवती ने इस आरोपी पर केस दर्ज करवाया था, तभी से यह फरार चल रहा था। तभी से पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईरान अमेरिका युद्ध में थावे के एक युवक की हो गई मौत। जिलाधिकारी ने आज कई विभागों के साथ की लगातार बैठक। एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को हुई 10 वर्ष कैद की सजा। स्मैक के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: से कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
4: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1112 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर

0: बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान

0: पक्षी व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: This is also one of the most ambitious.
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: SME, innovation, labor, environment and gender.
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into force, pact unlocks duty-free access for nearly 99% of Indian exports. Cent announces 8,508 crore rupees package for rural development in West Bengal. Government to launch a tranche of auction for critical and strategic mineral blocks today. US resumes blockade of Iranian ports in response to Iran's attacks on commercial ships in Strait of Hormuz. In football, Spain storm into final of FIFA World Cup after 2-0 victory over France. Argentina to take on England in the second semi-finals tonight. And in cricket, India beat England by 6 wickets in the first ODI of the 3-match series at Edgbaston. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99%.
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम, हर हर महादेव।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
11: Girls. You know what's chudi?
12: No.
11: Chudi means bangle. You want to try some chudiya?
12: Chudiya.

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
8: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
8: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
8: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
8: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
6: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: बहुत क्यूट है यार। अरे वो क्यूट है, तेरा भाई भी तो क्यूट है। डोंट वरी ब्रदर, राम जी की लारी, लेट्स गो।

0: Hey guys, thank you so much for watching our song.
1: Do like, comment and share.
2: And do subscribe to our channel, United White Flag.
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा
6: उसे राज्य के नव स्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। बीपीएससी की एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब दो चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अनापत्ति संसूचित की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की ओर से प्रचार और जनसंपर्क में आई तेजी, भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 प्रखंडों में नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों में आज से पठन पाठन की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर जिले के गौराडी प्रखंड स्थित कासिल गांव में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
7: उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार नए डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। यहां संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जल्द ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए यहां 3,600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। स्थायी भवन या परिसर बनने तक ये महाविद्यालय संबंधित प्रखंडों के चयनित प्लस टू विद्यालयों या अन्य राजकीय भवनों में संचालित होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में से 211 प्रखंडों में अब तक कोई भी अंगीभूत या संबद्ध डिग्री महाविद्यालय नहीं था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
6: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एकल चरण में आयोजित होने वाली परीक्षाएं अब दो चरणों में होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आयोग को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की प्रक्रिया और स्वरूप तय करने के लिए आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके लिए विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। आयोग संबंधित विभागों से परामर्श लेकर परीक्षाओं को दो चरणों में आयोजित कर सकता है। इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रणाली लागू हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में जनशक्ति जनता दल की वीणा मानवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए। इधर प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के नामांकन वैध पाए जाने के बाद समर्थकों में उत्साह है। प्रत्याशी 16 जुलाई तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, विधान पार्षद पवन सिंह समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इधर उपचुनाव के लिए एनडीए और राजद समेत अन्य दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
8: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
6: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में मजदूरी मद में 13 अरब 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि योजना के कार्यान्वयन के लिए इस मद में 9 अरब 24 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध करा दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 60% जबकि राज्य की 40% की हिस्सेदारी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम एन सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी बराले की पीठ ने मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री कुमार ने अभ्यर्थियों से लोक सेवक के रूप में संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारने की अपील की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: दिनांक 15 जुलाई राज्य के किशनगंज एवं अररिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी एवं सुपौल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 141.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज में खतरे के निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल रात 11 बजे तक 2,21,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है।
2: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी को रद्द कर दी गई है। इधर जिला पदाधिकारी तरुणजोत सिंह ने गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में लाल निशान से लगभग 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि जिले में नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। इससे कई स्थानों पर कटाव की समस्या शुरू हो गई है। नदी का जलस्तर डुब्बा घाट में लाल निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंधों के अंदर पानी फैलने लगा है। वहीं कमला बलान नदी झंझारपुर में 120 सेंटीमीटर और कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 113 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। महानंदा, परमान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड अंतर्गत सहूरिया पंचायत में परसाहा कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामपोखर और भेड़हा गांव का सड़क संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि खरीफ मौसम के तहत जिन जिलों में बुआई और धान रोपनी की गति अपेक्षाकृत धीमी है वहां विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण कर रोपनी कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इधर अल नीनो के संभावित दुष्प्रभावों को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR पटना ने किसानों के लिए परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार किसानों को कम आयु वाली स्वर्ण श्रेया, स्वर्ण उन्नत और प्रभात समेत सूखा सहने वाले धान बीजों की खेती करनी चाहिए। वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप परिसर में इस वर्ष नवंबर दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम का आयोजन किया जाएगा। पटना स्थित सचिवालय कक्ष में हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में शिकायत आने के बाद वैशाली जिले के गुरौल अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजू कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया गया है। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने डांस ग्रुप में शामिल 3 नाबालिग लड़कियों को मुक्त करा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत ये सफलता मिली है। उन्होंने लोगों से बाल श्रम, मानव तस्करी और शोषण के मामलों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या स्थानीय प्रशासन को सूचित करने की अपील की है। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसिया हनुमानगंज के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पुलिस ने एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। पटना पूर्वी की पुलिस अधीक्षक शैलजा ने बताया कि वैन चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सहयोग कार्यक्रम में सीएम ने खुद 100 समस्याएं सुलझाई। दैनिक जागरण ने लिखा है, हॉर्मुज में वाणिज्य जहाज पर ईरानी हमले में गोपालगंज के युवक की मौत। प्रभात खबर ने फीफा विश्व कप से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर लिखा है, स्पेन 16 साल बाद फाइनल में, फ्रांस का सपना टूटा। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, अदालतों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे 7 दिन करेगा सुनवाई। राष्ट्रीय सागर लिखता है, सोनम वांगचुक 17 दिनों से अनशन पर, कई प्रमुख हस्तियों ने अनशन खत्म करने की अपील की। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार के सभी 36 सदर अस्पतालों में अब रात में भी मिलेगी इमरजेंसी सेवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर जिले के कासिल गांव से राज्य के नव स्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। बीपीएससी की

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: Now pick it up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, मैं ललन काजन बोल रहा हूँ।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: मौसम कैसा है वहाँ का?
2: मौसम ठीक है यहाँ,
1: इधर तो गर्मी पड़ रहा है दिल्ली में।
2: अच्छा, बारिश नहीं हुआ है क्या अभी?
1: हुआ था, अभी फिलहाल बंद है 2-3 दिन से।
2: अच्छा, कोई नहीं, फिर घूमते फिरते जाएगा।
1: मैडम आपका नाम क्या हुआ?
2: भारती।
1: भारती जी, मुझे एक गाना सुनना है।
2: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, शायद मेरी शादी का ख्याल तेरी मम्मी को आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है।
2: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
1: ये सबसे पहले तो आप और बाकी जितने भी हमारे रेडियो श्रोता गण है भाई, सभी को और मैं को सुनना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों लोग सुनना चाहता है गाने को।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ओके।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: लाल बाबू बोल रहे हैं,
1: क्या हाल चाल है? नहीं,
0: सोनी जी बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: सिद्धार्थ जी। तो क्या समाचार है?
1: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। टीम का नाम है आज का संजू।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है जीजी जीजू का मंडल वाला।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: और विकास दीदी दीदी है, गुड़िया है, सीमा है, दादी जी है, आप है, आप
1: ठीक है। गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034-48652 पे।
8: ब्रेक के के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
10: रश्मा बोल रहे हैं।
9: क्या हाल चाल है?
10: ठीक है, अपना बताइए।
9: हमारा भी ठीक है।
10: बड़ा इंतजार कर पा रहे हैं।
9: हो जाता है कभी कभी।
10: अभी गाना नहीं सुन पाते हैं, कभी सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते, इतना मेहनत करने के बाद। हमने सुन पाते फरमाइश किए थे गाना सलमान खान का, कहाँ सुन पाए, नहीं सुन पाए।
9: सलमान खान का कौन सा सॉन्ग? वो तो बजाया, हमने तो बजाया था।
10: हमने सुनते नहीं किया। मगरिब का टाइम हुआ था, बंद करे थे नमाज पढ़ने के लिए।
9: तो कितने बजे? हम तो मतलब 5 से 7 चलता है,
10: 6 बजे के बाद बंद करते हैं। मगरिब का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने का टाइम होता है।
9: नहीं, लेकिन आपका गाना बज गया था। और सुबह में तब सुन लीजिएगा, 10 से 12 बजता है।
10: वो भी सुनते हैं लोग।
9: 9 से 11 बजे तक चलता है।
10: आज के लिए गाना सुनवा दीजिए।
9: बता दीजिए
10: हिंदी गाना, ज्यादा तो मालूम नहीं है, थोड़ा सा मालूम है, बता दे रहे हैं। आपको समझ में आ जाए तो बजा दीजिए, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है।
9: जी बिल्कुल बोलिए, अगर समझ में आता है तो हम भी बजा ही देंगे।
10: कोई नहीं आएगा ना हिंदी ना, मैं चाहे तुझे वही लगाना सुनना है।
9: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
10: आपको सुनवाएंगे सोनी में हमको, और जितना लोग रेडियो सुनते हैं सभी को सुनाएंगे।
9: हाँ हाँ, मेरा तबीयत ठीक है।
10: नाश्ता तो हो गया? बारिश तो खूब हो रहा है अभी।
9: हाँ, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अभी खुला हुआ है।
10: खुल गया। ठीक है बहन, तो गाना सुनवा दे फिर।
9: हाँ बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, खाना खा के अभी फ्री हुए हैं और मैडम जी ने फोन लगा जाए तो लग नहीं गया।
1: चलिए तब तो बढ़िया है
0: जी। कौन भारती जी बोल रही है? सोनी जी बोल रही है।
1: भारती।
0: अच्छा, तो मेरी फरमाइश है, आज पिक्चर का नाम है दलाल और गाने के बोले मर गए फोकट में कोई तो हमको लियो बचाए ऐसा चीज सलाह मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी सबसे पहले आपको है और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा कगवासा से।
1: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
0: धन्यवाद।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नाम बता दे पहले अपन।
14: नाम हमारे शांति कुमारी।
15: और कहाँ से?
14: अमेठी से।
15: अच्छा,
14: हो गई बने?
15: हाँ, हमारे तो हो गई, बराबर खाली बनी।
14: हाँ, हो गई बा। गाना सुना दिए मेरे को ना, तुम मेरे हो ना, ठीक है, हिंदी गाना।
15: अच्छा, और गाना क्यों सुना हो के बाद?
14: हाँ, हमारे भाई बड़े, मम्मी बड़े, बाबू बड़े।
15: अभी तो रिकॉर्डिंग होता गाना शाम के 5 बजे से बाजेला।
14: हाँ,
15: फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो।
14: हाँ, 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते यार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: इसीलिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और सब सुनाइए, कैसे हैं?
1: हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास कुशवाहा बोल रहा हूँ की पूर्वी चंपारण से। और सब सुनाइए, अपना घर परिवार में और रिमझिमपुरा परिवार कैसे आप लोग?
1: हम सभी ठीक है और घर परिवार में भी सभी कोई ठीक है।
0: जी अच्छा रहिए, खुश रहिए, सुबह से यही कामना है वाला जी के बाबा से।
1: तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: जी अभी तो कोयल जैसी मधुर आपकी प्रस्तुति हेलो फरमाइश का कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ और अपने बातें भी कर रहा हूँ, साथ में बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर का तो मौसम अभी ठीक है।
0: जी इधर तो कभी धूप कभी छांव हो रहा है, सुबह में हल्का बारिश हुई है इधर। जी
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी फिल्म का नाम है बम ब्लास्ट और गाने का बोल है मुझे जीने नहीं देती है याद दीदी।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त में हुए संजय साजी, मोहम्मद अलार जी, दीपक कुमार दास जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, उत्तर कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, अंचल कुमार जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुदान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जखमी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी भारती जी की तरफ से कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद,
1: वेलकम।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
16: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
18: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
18: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते,
18: आप सोनी जी बोल रहे हैं?
3: नहीं, भारती।
18: भारती जी, बाप बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है जी।
3: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
18: विकास कुमार हिमतापुर से।
3: अच्छा, कैसे हैं आप?
18: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
3: बस ठीक है।
18: अच्छा, अभी गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
3: गोपालगंज का मौसम अभी सुहाना है।
18: अच्छा, बारिश वरिश हो रहा है?
3: बारिश हुआ था रात को, अभी ठीक है, अभी नहीं हो रहा है।
18: और बताइए मैडम, खाना वाना हो गया?
3: हाँ, हमारा तो हो गया, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका खाना हुआ या नहीं?
18: नहीं, हम लोग का अभी खाना नहीं हुआ, अभी सुबह का खाना हुआ है, लंच में खाना होगा 1 बजे।
3: अच्छा, सब तो ठीक ही है।
18: हाँ, सब बढ़िया है मैडम। धान होने लग गया सब खेत में, बहुत पैसा लगता है खेत में धान लगाने में।
3: वो तो है।
18: हम तो आ गए दिल्ली में, हमको आया हुआ है 15 दिन घूमने में। आज मेरे को गाना सुनवाइएगा, वो कौन सिंगर नहीं है?
3: कौन सिंगर
18: नहीं, ये मेरा दोस्त से बात कर लीजिए, बात करना चाहता है।
3: दे दीजिए,
18: वही फरमाइश, गाना का फरमाइश वही देगा। हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
18: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार,
18: मुझे गाना सुनाता की साड़ी लाल जी का।
3: नाम बता दीजिए पहले।
18: मेरा नाम कुलदीप है।
3: और कहाँ से?
18: मैं यूपी से हूँ।
3: अच्छा, तो क्या हाल चाल है आपका?
18: बात एक बार बढ़िया है।
3: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया होना ही चाहिए।
18: जी मैम, बढ़िया हुआ लाल जी।
3: हाँ हाँ, हम भी ठीक है
18: जी मैम, बढ़िया चाहिए। सारी लाल जी का गाना सुनना था।
3: कौन सा सॉन्ग?
18: जी जान गई लू, कितना पानी में बड़ा पहचान गई लू।
3: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
18: हेलो, मेरे दोस्त से आप बात कर रहे हैं? हेलो,
3: पूछ रहे हैं उनसे कि गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं।
18: गाना तो हम लोग अपने दोस्त में सुनेंगे, आपको सुनवाएंगे, जितना रेडियो रेंजन सुनने वाला है सब श्रोताओं को डेडिकेट कर। फरमाइश सुन लिए?
3: हाँ सुने हैं।
18: खेसारी लाल का है बेवकाई, इनका मन है, सुनवा दीजिएगा। ठीक है ना, इनके मन पसंद से आज हम तुम अपने फरमाइश अपने खुद बात कर लो और कर दो फरमाइश।
3: जी बिल्कुल, तो इनको गाना प्ले कर देंगे। चलिए फिर,
18: ठीक है, ओके,
3: गाना प्ले करते हैं सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मुझे गाना सुनना है।
1: जी गाना तो सुनाऊंगी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, बहुत दूर से आ रही है लग रहा है।
0: जी नेटवर्क थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो गाना सुनना है, दिल वाले का मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जी सबसे पहले आपको मासूम कौशर कमरन भाई मन भाई अन भाई भाई आयुष भाई प्रिंस भाई लक्ष्मी जी हेमा जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ जितने
1: जी। बिल्कुल, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
11: नमस्ते
10: मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम।
11: आज भी गाना सुनवा दी।
10: नाम बता दी पहले।
11: परमात्मा कुमार। कलम मशीनिया से।
10: तो हाल चाल ठीक बानो?
11: ठीक बाबर कुछ सुनाई सब बता।
10: हम नहीं होके ठीक है बानी सर।
11: बारिश गोपालगंज में होता की?
10: बारिश होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं हो, मैंने दिन में तो एक बार
11: निकला था। बारिश काल भवे बहुत बिजी हो चुकी है, बारिश बाहर के काम रहे हैं। पंजाब में बारिश काली रात ही आधी मौसम बनल बा।
10: चले ठीक है बाबा।
11: गाना सुनवा दी सुनती राती गाना।
10: गाना बता दी कौन सा?
11: बोले पसंद के बजा दे
10: ना, पर रोगो बताई के पड़ी।
11: एक बार हमारा बता के पड़ी। बार बार सुनवा नहीं करोगे सुनवाई अपने भी है।
10: ना ना ये पड़ी रोगो बताई, रोगो बताए के पड़ी।
11: सुनती राती गाना बजा दे, वो गाना का नाम बा गाना है वो तेजी वाला, वो धनिया वाला गाना नहीं है, कौन सी के साथ जो है वह गाना बजा दे। उसी लाइन में गाना बाजी हैदराबाद वाला कौन लगी।
10: ठीक बाबा चले। हाँ हाँ
11: ठीक है,
10: तो गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, इतना सुनाइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: आज हम पहली बार कॉल किए हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम संजय दुबे पड़ेगा, संजय दुबे सासाराम पुणे महाराष्ट्र।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: का नाम क्या पड़ेगा मैडम?
1: मेरा नाम भारती है।
0: तो हम सुनते तो रिंगिंग बहुत दिन से है, लेकिन कोशिश बहुत बार की है लेकिन लगा नहीं, बहुत भीड़ रहता है ना एक नंबर। आज पहली बार में सोचा ट्राई करता हूँ।
1: तो पहली बार में ही लग गया। तो
0: हमें भोजपुरी गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: कौन सी का गाना है? गुनगुना दो
1: जी, बोलिए।
0: आई हो दादा की आवाज हो दरबा, रात भर घूसल रहे झारा वाड़े भी दरबा, रात भर घूसल रहे झारा वाड़े भी दरबा, आई हो दादा कैसन की आवाज है दरबा। ये गाना सुनना है।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: जी जी, सबसे पहले आपको सुनाएंगे और रिमझिम के सभी जितने भी सुनने वाले दोस्त लोग हैं आगे लोग सुनाएंगे। और हमारे भैया है रामदिला कुशवाहा भैया, संतोष दुबे जी है, और उनके एनके वी शर्मा सर जी हैं, श्वेता पाठक जी हैं, और मुन्ना भाई मुंबई वाले हैं, और जितने भी सब दोस्त लोग ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को बुलाएंगे।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894 18744।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
12: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: The phone ding ding bajti hai to kehte hain
16: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो मैम, नमस्कार।
17: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
14: धन्यवाद जी। मैम कैसे हैं?
17: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
14: हम भी अच्छे हैं, उम्मीद है कि पूरा टीम अच्छा होगा। भारती मैम बोल रही है?
17: हाँ हाँ।
14: किसी शो में गया रहता है मैम, उस शो में क्यों नहीं आती है?
17: आते हैं ना।
14: नहीं, हम तो सुनते हैं, नहीं आती है।
17: हम तो सैटरडे को तो पूरा दिन हम ही थे,
14: उस दिन नहीं सुन पाए मैम। और भोजपुरी एक्सप्रेस में आएंगी तो अच्छा लगेगा।
17: भोजपुरी एक्सप्रेस में
14: मैम हम कितने नंबर पे? बहुत लेट है ना।
17: अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
14: जी मैम, सफरोज अली बोल रहे हैं।
17: मुझे तो पता है लेकिन लिसनर लोग को तो नहीं पता है ना। तो और सब बताइए, और सब कैसा है हाल चाल?
14: मेरा नाश्ता हो गया।
17: मेरा तो हो गया, आपने कर लिया?
14: हम कर रहे हैं। और आपके पास अभी याद आया कि उनसे बात करें, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया, 2-3 दिन बुधवार दिन बात हुआ था। जी मैम, तो मुझे गाना सुनना है। गाना सबको अच्छा लगता है, उस गाने कितने भी तारीफ किया जाए कम है।
17: तो मुझे भी बता दीजिए कौन सा गाना है।
14: गाना है दूल्हे का सहरा, गाना है ना वही वाला।
17: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
14: अभी सुनने वालों को और आपको सोनी मैम को।
17: चलिए सर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
14: धन्यवाद।
17: ओके।

0: हेलो मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल यही है कि दुकान पर बैठे हैं, कहीं ग्राहक ना आ जाए।
1: अच्छा,
0: इसीलिए जल्दी बात कर लेते हैं। कर्तव्य फिल्म का कोई भी गाना हो सुनवा दीजिएगा।
1: कर्तव्य मूवी का जो गाना बोले थे ना, आज बजेगा।
0: आज बजेगा?
1: हाँ,
0: तो वो तो गाना वो सुना दीजिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
1: ओके,
0: या पीती हूँ गम भुलाने को। या आप पिए या हम पिए, जो पिए गम भुला जाएगा। तो यही गाना सुनवा दीजिएगा, डेलिकेट रहेगा आपको और सोनी जी को, और हम दो ही तीन आदमी हम लोग सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर देते हैं, सुन रही है?
0: हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम, कीजिए जल्दी। हाँ, थैंक यू।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
14: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
15: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
14: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
15: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
14: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
15: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
14: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
15: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
14: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
15: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
16: Now pick it up, pick it up.
17: Hello.
16: Now pick your phone up. Pick it up, pick it up.
17: Hello.
16: Now pick your phone up.
18: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एमजी 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम जी।
19: नमस्ते,
1: भोरे से आप बोल रहे हैं।
19: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: अच्छा है, अपना बताइए कैसे है?
19: हम भी अच्छे हैं।
1: ठीक है, अच्छे से काम है।
19: तो क्या कर रही हैं अभी?
1: अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, तब मेरा फोन लगेगा।
19: चलिए, तब तो आपका फोन लग गया ना।
1: अभी तो सब ठीक है, नाश्ता हो गया?
19: हाँ, नाश्ता हो गया।
1: मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंड है।
19: और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: गाना सुना दीजिए उदित नारायण के, कोई भी गाना, अच्छा गाना।
19: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 एफएम।
1: जी मैडम,
19: नमस्ते।

0: जी बहुत स्वागत है रेडियो रिंग 90.4 में। वालेकुम अस्सलाम,
1: मैम कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम लोग बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छा। नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम तो साइन पलक है।
0: अच्छा,
1: और सब बताइए मैम, और आपका अच्छा है ना?
0: हाँ हाँ,
1: मैम आपका नाम श्रुति है?
0: नहीं, भारती।
1: अच्छा भारती, पहले श्रुति थी ना? चलिए, नाश्ता पानी हो गया है?
0: हाँ, नाश्ता पानी करके आते हैं घर से।
1: सर का मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम हमारे यहाँ अभी तो ठीक है, बारिश हुआ था रात को, तो अभी मौसम ठीक है।
1: चलिए,
0: कौन सा गाना सुनिएगा?
1: मैम सुना दीजिएगा, बरसात वाला, टिप टिप बरसा पानी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सभी निशुल को डेडिकेट है, और आपको भी, सभी आपके को डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल। तो
1: जो छूट गए हो सभी को, सभी लिस्नर को।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। मैम आपसे, आपका तो मोबाइल बड़ा वेटिंग बता रहा था,
0: क्योंकि अभी कॉल बहुत
1: लाइन अभी बिजी चल रही थी।
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त से बैठ कर लगा रहे थे, लगा से बिजी बिजी आखिरी में लगा है।
0: इधर कॉल थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लास्ट चल रहा है, और उधर सभी लोग लगातार कॉल करते हैं, तो
1: अच्छा वो तो लग जाएगा।
0: चलिए
1: अच्छा,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: सुनिए गाने, मतलब गाने का समय कितना बजे? पहले हम लोग सुन रहे थे, अब हम लोग भी बिजी रहते हैं, लोग मतलब नहीं सुनते हैं लोग। गाने का मतलब टाइमिंग?
0: अच्छा, गाने का समय है 5 से 7 शाम को। अच्छा, और सुबह सेम रिपीट होता है।
1: योर
0: वॉइस अभी चालू हुआ है, 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा
1: योर वॉइस।
0: हाँ,
1: पहले चलता था 10 से 12।
0: 10 से 12 सेम अब रिपीट होता है, यही हेलो माई चॉइस जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो सेम वही बजता है। चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।
1: याद कीजिएगा मैम।
0: जी
1: याद कीजिएगा हमको।
0: जी जी बिल्कुल याद रखेंगे।
1: ओके ओके, बाय टाटा।
0: टाटा।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-3945-651 या 97-0-97-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, नमस्ते।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: इसके दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार सुशासन ग्राम सोना मंत्री पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
6: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: हाँ, मेरा हाल खबर तो बिल्कुल बढ़िया है। आप सही, आप ऐसे हैं, आप रेडियो रिमझिम से फोन कर रहे हैं।
6: मैं भी ठीक हूँ और रेडियो रिमझिम के पूरे परिवार भी ठीक।
5: चलिए, बारिश हो रहा है कल से तो हम लोग बारिश से मजा लिए हैं। आप बताइए, कोई बारिश हो रहा है?
6: इधर तो रात में बारिश हुआ था, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है।
5: रात में बारिश हुआ था?
6: हाँ
5: सर, अब हम लोग सुबह में बारिश हुआ था। ये बढ़िया बात है, अच्छा है। जो भाई के काम पे ले गया वही बहुत बढ़िया।
6: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
5: आज गाना सुना दीजिए, मेघा रे मेघा कहते हैं गाना, वही सुना दीजिए।
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
5: डेडिकेट में सबसे पहले आपको वहाँ पर रेडियो जिन संपन्न परिवार को और दोस्तों के ऐसे कहना था मामा साबी जी, गुमारी सुपिन कुमार जी, राम लखन कुशवा जी, कृपा गांव से अजीत कुमार कला बैकुट डाउन से नरेश सोहनी, दीपक दास, उदय बान ठाकरे, जिन्ना साहब, धर्मेंद्र, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम दोस्तों, विशेष को राजेंद्र यादव भारती संत लाल गौतम, हमारे नाम से जाने पहचान तमाम खास सर मोहम्मद लाल अंसारी मझौलिया के उनको रहते हुए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
6: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: क्या हो रहा है अभी? तो श्रीराम से आ रहे हैं तो कौन लगा रहे हैं, तो खाली पे वापस लगा रहे हैं।
1: कोई नहीं, देर तो फिर लग ही गया,
0: लग हो गया है। और सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है।
0: सुनील दी कहाँ पे?
1: सुनील दी वो भी इधर ही है, काम में लगी हुई है अपने।
0: मनोरमा दीदी
1: वो भी उधर ही है।
0: वो तो चलेगा ना?
1: हाँ चलेगा।
0: और सब बढ़िया है? मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो ठीक है,
0: हमारे इधर थोड़ा धूप हुआ है।
1: अच्छा, इधर भी बारिश खुला हुआ है। अभी बाहर तो नहीं गया देखने की कैसा है।
0: सुबह में बारिश हुआ है क्या उधर?
1: नहीं, रात से हो रहा था तो सुबह में खुला है, धीरे धीरे हो रहा था सुबह में भी, लेकिन अब ठीक है।
0: नहीं, यहाँ पे तो रात ही की वर्षा है, सुबह में नहीं बारिश हुआ है। धान रोपनी हो गया अपना?
1: हाँ, अपना हो गया सब।
0: चलिए ठीक है। कुछ दिन गए थे गोपालगंज, मतलब 3-4 दिन हो गया है। गए चलाने के लिए गए थे उधर। गाने कर रहे हैं,
1: बता दीजिए।
0: कमल सिंह का व्यवसाय सॉन्ग कोई भी बजा दीजिए, बढ़िया ये बजा दीजिए, हो ही ना प्यार पे बारा।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, सोनू सर को, अफसर सर को, डायरेक्टर सर को, और जितना रेडियो सुन रहे सब लोग का, और मेरी बहन है करिश्मा, उसको भी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: फिर बात होगा। हाँ, रेडियो 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99555-94-94-53
3: और 90-97-61-60-02।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में। इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन

0: के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। समय 9:30 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि हर रोज की तरह पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजना है और पुराने गाने के साथ एंजॉय करना है। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो नमस्ते, MD 97 दरभंगा भजीतपुर से मैसेज करते हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और कहते हैं कि मुझे एक गाना सुना दीजिए, फिल्म ऐसे ना थे, गाने का बोल इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे में से पहुंचा हुआ है, मैंने में साझा विलेज मुगल ब्रेचा से और शौंग। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, शौंग की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है फिलहाल। आगे में से पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो आज मेरा गाना बज सकता है क्या। बिल्कुल बज सकता है यदि आप पुराने गाने की फरमाइश करती हैं तो। इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, आज मौसम एकदम सुहाना हुआ है, मंकेश साहनी बिरगज वेस्ट चंपारण से और बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करते हैं सुरेश जी त्रिबिरवान से और गाने की फरमाइश करते हैं, माँ मुझे माँ से मिला दे। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, हम भी हैं साथ में। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, वीरेंद्र गुप्ता भैया के खरिया रोग सोल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो रेडियो रमझिम, नमस्कार सोनू भाई, सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। और मैं राजेश प्रसाद सूरत से और आपको सुन रहा हूँ, आज मुझे भी एक गाना सुनना है। तो बिल्कुल सुनना है तो सुनाएंगे और फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार, सर जी मैं शिवांश चौधरी प्रेम नगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर से और मुझे गाना सुनना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे फिलहाल। आगे मैसेज भी पहुँचे, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सर मैं पिठौरी से भागमनी यादव। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में भागमनी यादव जी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि क्यों कल न्यू था क्या। तो बिल्कुल कल आपकी गाने जो थे वो न्यू गाने की फरमाइश थी, जिसके कारण कल आपकी फरमाइश हम पूरी नहीं किए हैं। आज आप पुराने गाने की फरमाइश करती हैं तो आज पूरा होगा, यदि नए गाने की फरमाइश करती हैं तो आज भी पूरा नहीं होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और MD 97 जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमसीम 9.4 FM पे सुन रहे हैं हम सभी और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोगों को तो पता ही है कि पुराने गाने का फरमाइश करना है, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं काफ़ी प्यारा सॉन्ग तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए, आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए, MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से। और आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है गाना सुनना है शोले मूवी का कोई हसीन जब रूठ जाती है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं संतोष कुमार पटेल जी सूरत से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुनो भैया मैं अनिल छोटपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और कुछ कहते हैं कि 23 तारीख के बाद आज जुड़ा हूँ आपको 23 बार नमस्ते, मेरा फरमाइश भेज दो क्या। बिल्कुल भेजते हैं तो पूरा करने की कोशिश तो रहेगा मेरा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए, बिल्कुल आपकी भी सॉन्ग प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे बॉर्डर फिल्म से गाने के फरमाइश किया गया है और इस गाने के फरमाइश करते हैं हमारे श्रोतागण हैं वेस्ट चंपारण से। और गाने मैसेज करने वाले मंकेश साहनी जी हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं मंकेश साहनी जी आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे सोशल लाइफ एक्सप्रेस फरमाइश का। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आगे कई मैसेज पहुंचे हुए हैं और कुछ मैसेज टाइप भी हो रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हाउ आर यू, तो बिल्कुल बढ़िया, अपना भी बताएं। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातो फरम दुलुलिया से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि जय जय भोले नाथ, केहू बोला के भूला जाला, आपन अपने से दूर हो जाला, कैसे बताई रहुआ कि हम आपन ही घात कर जाला, नमस्कार प्रणाम, पत्थर दिल ना होला, मोम पत्थर ना होला, दिल दिले हैं मन

मंदिर ना होला, दिल दिले हा मन मंदिर ना होला। गाना भोले बाबा बम भोले बाबा तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा सावंत शर्मा जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमू आ गए नहीं, हमरो मैसेज शामिल करिए। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम पर, लेकिन आप कौन है अपना परिचय दीजिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है निशा शुक्लवा से करती हैं गाने की फरमाइश, मेरा प्यार मिल गया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी अलका याग्निक की आवाज़ में।

94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और इस समय जो है आगे निकलते जा रहे हैं, आगे गाने की फरमाइश कहीं पहुंच रहे हैं और आगे शाहजहाँ की तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुंचा तो बिल्कुल पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा वो लिखा गया है कि जब तक जिंदा हूँ तो मैं रोज़ रील भेजती रहूँगी, जिस दिन ना भेजूँ उस दिन सोच लेना अगले दिन भेजूंगी, कुछ भी सोच लेते हो अभी मेरी उम्र ही क्या है। और इस मैसेज को करती हैं शबीना, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सुनो भाई मुझे गाना सुनना है, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं विकास श्यामपुर से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स गाना सुनाने के लिए, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि फरमाइश भेजे प्ले होगा, बिल्कुल आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी समय निकल गए हैं और हमें लगता है कि और 2-3 ही गाने प्ले करने की समय बचे हुए हैं और कई गाने के फरमाइश हमारे पास पड़े हुए हैं, तो आज नहीं कल रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और सुनोज जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सुनोज जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और कहते हैं कि इस ग्वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखे, कलम इधर लाओ बेवफाओं के बारे में हम लिखेंगे। बड़ड़िया थाना क्षेत्र बालापुर से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आपने जो ऊपर की लाइनें जो भी भेजे हुए हैं वो हम इस तरह की लाइनें शामिल नहीं करेंगे, आप कुछ भी मैसेज कर देते हैं तो थोड़ा सा सुधार कर मैसेज करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, सुरेश शाह जी की तिरबिरवा से गाने की फरमाइश करते हैं, माँ मुझे माँ से मिला दे, चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

4FM सुन रहे हैं और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं और शुजल्ला इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग माँ शेरवाली और इसमें सिस को इस मैसेज को करती हैं रोशनी और कहते हैं कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा और मैं भी जुड़ गई हूं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मुझे भी शामिल कर लीजिए, निशा पांडे, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा गाना क्यों नहीं बजेगा, तो बिल्कुल आपका गाना तो बजने की लाइन में है लेकिन समय बहुत कम है। और इस मैसेज को करते हैं विकास जी श्यामपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि जय बजरंग बली भाई, कैसे हैं? ठीक है ना? सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक है ना? सुपर गाना वाह भाई। सविता चौहान भोज छपरा से जुड़ी हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि और इस मैसेज को करते हैं राजेश जी सूरत से और गाने के फरमाइश करते हैं काहे सैया तेरी मेरी बात बने नाही। ये गाना सबसे पहले आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और मैडम जी के साथ सुनना चाहता हूँ, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से।

छोटा सा सॉरी टेडो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और गाने एंजॉय कर रहे थे अभी बोलबम का और रितेश पांडे की आवाज़ में। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे श्यावन शर्मा जी और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। चली रहो के धन्यवाद भाई रेडियो एमसीएम सुनने खातिर। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई गाना बजाने के लिए। और इस मैसेज को करते हैं राजेश जी, तो चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए राजेश जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शिवांश चौधरी जी इस मैसेज को करते हैं और गाने के फरमाइश करते हैं तू मेरा हीरो नंबर वन। तो चलिए अंत में आपकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय भी हो गए हैं समाप्ति का। तो अंतिम गाने शिवांश चौधरी जी की रहेगी और जो भी सुरतागढ़ छूट जा रहे हैं कल खुशी से रहेगा कि यदि आप सभी का मैसेज पहुंचता है तो पूरा करने की। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहें आप सब रेडियो 90.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या।

0: अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज,
1: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

0: है कि आप सभी ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त आज सोनी आप सभी के बीच हाजिर हो चुकी हूँ आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। 12:05 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेके 4 बजे तक आप रह सकते हैं हमारे साथ अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा वॉइस रिकॉर्ड करिए और भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और जो भी लिसनर व्हाट्सएप इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए कॉल का माध्यम है, नंबर है 7277166696 पे कॉल करिए और जुड़ जाइए अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी आज के शो की आगाज करते हैं और आप सभी बताइए कि मेरी आवाज़ आप सभी के पास पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि अभी ऑफिस में कॉल आया था कुछ जगह से कि हमारा रेडियो बंद है, लेकिन यहाँ रेडियो चल रही है। तो आप सभी बताइए कि आवाज़ पहुँच रही है कि नहीं, ऐप कैसा चल रहा है ये भी बताइए और आपके तरफ का मौसम का हाल चाल कैसा है बताइएगा और गाना इन्जॉय करिए जब तक आपकी मैसेज पहुँचती है तब तक, और गाना कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा।
1: तो अगली बार जब बारिश होगी हम अपने आप में जाएंगे।

0: की दुकान है।
1: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 12:08 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और कार्यक्रम से आप भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और नंबर है 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुनिए, या फिर कॉल करिए 72-77-16-65-96 पे। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुका है। आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिश यादव जी हैं दुमरा यदवंशी टोला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उषाद जी हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, हम भी जुड़ चुके हैं। और राम कुमार जी हैं एमपी से, बालाघाट से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम गाना सुना दीजिएगा। और बिल्कुल गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और नईम अंसारी जी हैं जामतारा से, बहुत बहुत

स्वागत करते हैं आपका भी। और एक यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका अरशाद जी, लुधियाना पंजाब से। विपुल सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दीनानाथ यादव जी हैं कुवैत से। और सोनलाल कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सरफरोज अली है आकिल टोला से। संजय यादव जी है दुबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। यहाँ एक और मैसेज, और लाल सिंह जुड़े हुए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री राम जी हैं सासाराम टू दिल्ली से। और धनीश मिश्रा जी, गणेश कुमार जी, राम कुमार पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति रेदास जी, और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे हम यहाँ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका नईम अंसारी जी जामतारा से। और ओए राजू प्यार न करियो गाने की फरमाइश है। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर दी है, इंजॉय करिए अपने गाने को। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले हैं नईम जी जामतारा झारखंड से। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो और भी कई सारे मैसेज है। वंश कुमार जुड़ चुके हैं सीधी जिला मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी तेरी मोहब्बत, तेरी मोहब्बत को पलकों पर सजाएंगे, मरकर भी हर रस्म निभाएंगे, देने को तो कुछ भी नहीं मगर आपको खुशी मांगने खुदा तक भी चले जाएंगे। और मैसेज के साथ है नाम है इनका सोनालाल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करेंगे, सुनेंगे कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: कैसे हो सोनिया जी, ठीक ठाक हो?
0: जी हाँ बिल्कुल मस्त, बिंदास झकास। आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मेरी बस दुआ है कि भगवान आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे।
0: जी धन्यवाद। और आप स्कॉटलैंड से
1: बात कर रहे हैं? और मैं आज गाने की फरमाइश करना चाहता
0: हूँ। जी जी बिल्कुल,
1: गाना की फरमाइश है तुम दिल की धड़कन में रहती हूँ, फ्रॉम द मूवी धड़कन, मेरा फेवरेट गाना है, प्लीज लगा लो।
0: जी बिल्कुल लगा दिए गाना आपका, नाम बता दीजिए एक बार श्रोताओं को।
1: मेरा नाम है मोहम्मद वकास, ग्लासगो स्कॉटलैंड से।
0: जी तो प्ले कर दिए आपका गाना।
1: ठीक है, और मैं ये गाना आपको आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, गाना एंजॉय करिए अपना।
1: ओके नमस्ते जी।
0: नमस्ते।

0: देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में 12:25 हो चुके स्टूडियो घड़ी में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज लिख रहे हैं कि यहाँ एक मैसेज है कि मैडम जी रोवा के प्यारी आवाज़ सुने के मन के बड़ा सुकून आवाज़ सुन के मन के बड़ा सुकून मिलेला रोवा जब रेडियो रिमझिम पर बोले तानी तो लागेला कि जैसे हर तरफ खुशियाँ के बाहर आ गल बा। हमरा एगो छोटा सा निवेदन बाकी कृपया करके खेसारी लाल यादव जी के गावल गीत ओहो कमर में दागी बा सुनावल जा। बिल्कुल फरमाइश बा तो प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और अनिश यादव जी बानी डुमरा यदुवंशी टोला से तो हम रोगा के बता दी कि राव और गाने के फरमाइश जौन बा हम चलिए एक सप्ताह हो चुकल बाटे। और ये गीत हम अपना प्यारा दोस्त मनीष यादव सतीश यादव नीतीश यादव रौनक यादव और रुवा के सोनी मैडम जी समर्पित करत बानी। और सभी श्रोतागण के हमार प्यार भरल नमस्कार बा। और भगवान से प्रार्थना बा कि रुवा हमेशा ऐसे ही मुस्कुरात रही और अपन मधुर आवाज़ से लाखों दिल जीतत रही। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी मैडम जी। और गाना के फरमाइश बा तो बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और आगे यहाँ और भी कई सारा मैसेज पहुँचल बा कॉल भी पहुँचा ताटे तो चलिए अगला मैसेज यहाँ बाटे लिखा था नहीं कि हम जुड़ चुकल बानी। बहुत बहुत स्वागत बटे रुवा के भी जुड़ चुकल बानी था। और यहाँ दीपक जी बानी जम्मू से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अनिल जी हैं छोटपुर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी मैं भी जुड़ गया हूँ। और एक यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं कि दिल से नमस्ते हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए और मैं भी हाजिर हो गया हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हाजिर हो गया है। तो नाम पता मेंशन कर दिया करिए और आप लोग पीछे वाले मैसेज डिलीट कर देते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। कम से कम उसमें नाम पता तो आप लोगों का होता है नाम पता रहने दीजिए। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हमरो सुनी बिल्कुल रहो सुनतनी और पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं बगही बाजार से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि ओपनिंग सॉन्ग के बाद एगो पुराना सॉन्ग चला दें और मुगले आजम मूवी से बिल्कुल पुराना गाना के फरमाइश बटे लेकिन और अभी एक सप्ताह नीचे बज। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी पप्पू जी। बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ एक और मैसेज है राजापुर बाजार से ओम प्रकाश पासवान जी जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और मैसेज यहाँ लिख रहे हैं कि नाइस ओपनिंग सॉन्ग सुनी दी थैंक यू गाना बजाने के लिए और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और श्याम सुंदर जी हैं संग्रामपुर से। तो चलिए बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है सोना लाल जी जुड़े हुए हैं और गाना सुनना है तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। और नेक्स्ट गाना जो रहेगा वो कॉल के माध्यम से

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, आप कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी, सोना लाल कुमार जुड़े हुए हैं। तो वार्ड नंबर 9 से, थाना संग्रामपुर से, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, फीडबैक तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये।
1: थैंक यू सोनी दीदी गाना बजाने के लिए, धन्यवाद। हमारे दोस्त लोग हैं, कुछ नाम लेना चाहते हैं तो, श्याम सुंदर भाई हैं, अखिलेश भाई हैं, निकेश भाई हैं, अभी रघु भाई हैं, बुलेट भाई हैं, भूषण भाई हैं। हम लोग गाना सुन रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम सुन के। तो श्याम सुंदर भाई भी सुनते हैं आपका प्रोग्राम, वही बताया मेरे को जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है सुनकर। अभी पूना महाराष्ट्र में है, पेंट का काम कर रहे हैं मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है गाना सुन के। किसी को पेंट करवाना होगा तो बोलिएगा हम लोग का नाम।
0: तो अभी तो आप पूना महाराष्ट्र में हैं, अगर पेंट यहाँ करना होगा तो फिर कैसे होगा ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ नील जी है छोटपुर से, लिख रहे हैं कि मनोज तिवारी के मूवी का ये गीत बहुत ही बढ़िया लगा, मूवी भी ठीक ठाक है। और मूवी का तो पता नहीं, मैं सुनी देखी नहीं हूँ, लेकिन गाना सही वाकई ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया है। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम मैसेज तो पूरा पढ़िए। जी हाँ बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। और लिख रहे हैं कि हर स्कूल में लिखा होता है कि वसूल तोड़ना मना है, हर बैग में लिखा होता है, हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है, काश रिश्ते परिवार दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। और मिश्रा, धनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं सोनी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन रिश्ते में नहीं लिखा होता है, यही अच्छा भी है एक तरह से, अगर नहीं लिखा हुआ है तो, क्योंकि अगर लिखा होता तो कभी कभी इंसान को मजबूरी में झेलना पड़ता किसी किसी रिश्ते को, तो झेलने से अच्छा है कि उससे दूर होना और उसे छोड़ देना। और इस चीज़ का कई लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, तो ये गलत है बट सही भी है कि नहीं लिखा है साथ छोड़ना मना है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, राधे राधे, फिर से रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं। सुनील कुशवाहा जी हैं मैहर एमपी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आज आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश है, आपका एक सप्ताह हो चुका है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ कई सारे मैसेज है शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो चलिए पहले बात करते हैं कि कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार
2: जी, मैं पप्पू कुमार बोल रहा हूँ, पड़ाना पड़ा से।
0: जी कैसे हैं पप्पू जी?
2: जी मैम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया।
2: और मौसम उधर कैसा हो रहा?
0: आज तो धूप निकला हुआ है। गाना कौन सा सुनवा दें?
2: गाना इसको सुनवा दीजिए, फिर साजन झूला झूले। और नाम लेना चाहूँगा ऐसे भास्कर जी है, उमा शंकर जी है, और सपनम बहन जी है, रानी बहन जी है, कमरान भाई है, इरफान भाई है, और अनिल भाई है छोटपुर से। आप छोटपुर से अनिल भाई से कहना चाहेंगे क्या आप पढ़रिया ब्लॉक में काम किए हैं, क्या वही अनिल भाई है या दूसरा है, थोड़ा सुन के जरूर मैसेज दीजिएगा।
0: जी जी बिल्कुल, और वो खुद ही सुन रहे हैं, वो जवाब दे ही देंगे और मैं आप तक पहुंचा दूंगी उनका जवाब को।
2: जी जी मैम
0: जी, गाना प्ले कर दिए आपका।
2: जी मैम थैंक यू मैम,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद, सो मैं कॉल किया, एंजॉय करिए गाने को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखुल रोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707065।
9: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें, काफ़ी सारे मैसेज है लिख रहे हैं कि मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, मुद्दतें बीत जाती है किसी के इंतजार में, ये सिर्फ पल दो पल का काम नहीं। जी हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक की फरमाइश के है शाद पगड़ी देखावे अगरबत्ती। और मुकेश खरवार जी हिमाचल प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत है आपका और फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। यहाँ हर्षराज जी जुड़ चुके हैं राजस्थान जिला हनुमानगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लिख रहे हैं कि सभी को जय शनिदेव बोल जी, बिल्कुल बोल दिए हैं। और अनंत कुमार शर्मा जी हैं छिंगरौली से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, और ए मेरे हमसफ़र गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अख्तरी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, बने रही है हमारे साथ में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो सिंधी गुड आफ्टरनून, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी। राकेश भारती जी है बक्सर से एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम जी। सऊदी से राकेश कुमार जुड़ चुके हैं, वेरी गुड सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, और शमशेर जी जुड़े हुए हैं मुंबई से फरमाइश के साथ, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रही है हमारे साथ में। और यहाँ अहमद अली जी हैं सारे वार्ड नंबर एक से, बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून बोल दीजिएगा मैम सभी को, बिल्कुल बोल दिए हैं और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास अगली फरमाइश जो है अनिश यादव जी जुड़े हुए हैं दुमरा यदुवंशी टोला से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को खेसारी लाल की आवाज़ में रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

3.4 रेडियो रमजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं अनीश यादव जी दुमरा यदुवंशी टोला सिवान से और यहाँ आगे बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग भाई के और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार जी पिपरा नारायण से बहुत बहुत स्वागत एक बार आपका फिर से। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि विलेज त्रिलोकपुर से जुड़े हुए हैं विकेश सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और इनको भी गाना सुनना है खेसारी लाल की आवाज़ में डोली में गोली मार दें। बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं और रेडियो रिमझिम से हमें भी गाना सुनना है सुना दीजिए प्लीज़ और गाना सुनना है आपका इंतजार था अजीत देवगन की आवाज़ में बिल्कुल आपकी फरमाइश है प्ले करेंगे। और गाने की फरमाइश के साथ है दीपक जी जम्मू से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और बिना देरी अगली फरमाइश हम यहाँ प्ले करेंगे। और हाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून जय माता दी सभी को बोल दीजिएगा शिव सागर दीवाना जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से और गाना सुनना है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है शमशेर जी का मुंबई से एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और शमशेर जी, आपके तरफ से जो गाने की लिंक थी उसकी आवाज क्लियर नहीं थी, इसलिए हम आपका गाना जो है, गाना वही है बस चेंज कर दिए हैं, और इसका आवाज अच्छा था इसलिए।

93.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाले थे शमशेर जी, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मेरा नाम अजय है, उत्तर प्रदेश से हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अजय जी, बने रहिए हमारे साथ में। और लिख रहे हैं कि कॉल कल मेरी फरमाइश पूरी नहीं हुई थी, जी हाँ बिल्कुल, तो आज आपकी फरमाइश जो है बिल्कुल प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है सन्यासी रंजन बाबा जी जूर जी के, लिख रहे हैं नमस्कार प्रणाम रहुआ के हमू आगल बनी हमरो हाजिर लगा दी, बिल्कुल लग चुकल बा, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि जय माता दी, गुड आफ्टरनून मैम। और उत्तम सोनी जुड़ चुके हैं हरपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, लिख रहे हैं कि वाह बहुत ही खूबसूरत शो चल रहा है जी मैम, और आप गुनगुना के और चार चांद लगा दिए जियो सुपर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रहिए साथ में। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी प्लीज़, लिख रहे हैं कि मैडम जी रामा जी सन्यासी रंजन बाबा मुस्तफ़ा जी सऊदी अरब यूपी से पाजी और सभी लोगों को जिनकी फरमाइश वीक में 3 बार पूरी की जाती है, लेकिन हमारे लिए शब्दा ढूंढ रही हैं, ठीक है हम थोड़ी गुस्सा होंगे अगर लगे कि मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, तो प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो पप्पू ठाकुर जी मैं आपको बता दूं कि सन्यासी रंजन बाबा जी का पहला बात की फरमाइश सप्ताह में 3 बार प्ले बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इनकी फरमाइश ही सप्ताह दिन के बाद ही आती है, और कभी कभी सप्ताह के कई दिनों बाद 10 दिन पे भी आती है इनका, लेकिन शो से ये डेली जुड़ते हैं और हमारे रेगुलर लिसनर है, अगर आप बोलिएगा तो मैं स्क्रीन शॉट करके भेज सकती हूँ इनका भी। और एक क्या नाम बोले मुस्तफ़ा जी का, तो मुस्तफ़ा जी का भी जो फरमाइश है वो खुद ही 1 सप्ताह बाद फरमाइश अपने भेजते हैं, तो उनका भी मैं स्क्रीनशॉट करके आपको भेज सकती हूँ। रही बात पाजी का, तो ये भी डेली जुड़ते हैं और इनका भी फरमाइश जो है 1 सप्ताह बाद ही पूरा होती है। ऐसा होता है कि इन लोगों का फरमाइश जैसे संडे को एक पूरा होता है, तो संडे वाला जो फरमाइश होता है उसको हम वीक में योर वॉइस से, वो अलग है, वो स्पेशल शो है, उसको नहीं ऐड करते हैं। अगर आपका शनिवार को फरमाइश प्ले हुआ है और संडे को आप जुड़ते हैं, तो संडे को भी आपकी फरमाइश जो है प्ले होती है, और संडे को अगर फरमाइश प्ले हुई है तो अगली फरमाइश अगर मंडे को आपका एक वीक हुआ है तो वो होगा, तो इसको आप संडे वाले को नहीं जोड़ सकते हैं। और बाकी जो आप बोले हैं तो हम आपको स्क्रीनशॉट करके भेजा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। और आपकी शिकायत है तो कोई दिक्कत नहीं शिकायत करने के लिए, लेकिन अगर आपको सबूत चाहिए तो हम भेज सकते हैं, और आपकी फरमाइश है बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, और आपकी फरमाइश जो है हम मंगलवार को ही पूरा किए हैं, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि और मंगलवार को नहीं, कल ही आपका फरमाइश जो है प्ले हुआ है, तो आज कैसे कर दें आप खुद ही सोचिए। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी गुड आफ्टरनून, मनीष सजाक हैं फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से, और हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, सभी को हर हर महादेव बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार जी मैं भी जुड़ गया हूँ नेपाल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नेपाल से हैं बाल कुमार सहानी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं सन्यासी रंजन बाबा को मेरा नमस्ते बोल दीजिएगा मैम, बिल्कुल बोल दिए हैं। और उत्तम सोनी जी है हरपुर से, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी हम भी एक भी बात ही मैसेज करता हूँ, भाई मैसेज करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप मैसेज डेली कर सकते हैं, अपनी बातों को डेली रख सकते हैं, फरमाइश सुनने के लिए 1 हफ्ते की पाबंदी है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इंस्टाग्राम का सॉन्ग बजाएंगे क्या मैम, कल भी नहीं बजा था, बिल्कुल प्ले करते हैं, इंस्टाग्राम का भी सॉन्ग प्ले करते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है, सोनू कुमार जी जुड़े हुए हैं साउथ अफ्रीका से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब आप बोलिएगा कि हम एक गाना व्हाट्सएप से सुने दूसरा इंस्टाग्राम से, तो ऐसे तो नहीं होगा, आप कहीं एक ही जगह मैसेज करिए, तो फिर हम आपकी आने की भी फरमाइश ज़रूर प्ले करेंगे, और आपका मैसेज यहाँ भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। यहाँ आपकी मैसेज की फरमाइश जो है मंडे को हम पूरा किए थे और उसे याद है, और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास पहुँचा हुआ है अख्तरी जुड़ी हुई है, और उनको सुनना है गाना मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

रेहा अख्तरी जी की तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं कि ओके बहुत बहुत शुक्रिया, देर आए पर दुरुस्त आए। जी हाँ बिल्कुल देर आए पर दुरुस्त आए। और यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, अहमद अली जी की तरफ से मैसेज आ गया, लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरी जी का गाना बजाने के लिए, सुपर सॉन्ग। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमरो हाजिरी लगा दी दो दिन से घर, आज हाजिर लगा दी ठीक बा, प्रोग्राम हुआ था और हम रोज सुने नहीं, बिल्कुल। और मैसेज के साथ हैं

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं।

0: 8,81 में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि तो आज नहीं बजेगा क्या मैम गाना? बिल्कुल बजेगा, सोनू कुमार चौरसिया जी हैं साउथ अफ्रीका से, और थोड़ा वेट करिए आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इरशाद मास्टर जी हैं, छोटा छोटा बात पर नाराज़ मत हुआ करो, गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करो, और नाराज़ तब होना जब हम रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा बात नहीं है, आप रिश्ता नहीं तोड़िए और नाराज होने की कोई बात नहीं है, इरशाद जी हैं धनाव से। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग, ये सॉन्ग खाली आपको सुनना है जी मैम, और आधा सन्यासी रंजन बाबा को सुनाना है। और मैसेज के साथ है उत्तम सोनी जी, जी हाँ बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनवा दीजिए, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। तो डॉक्टर अमोद जी मैं बता दूं कि आज के शो की स्टार्टिंग में ही पहली फरमाइश जो थी इसी गाने की थी, और आपका वैसे भी एक सप्ताह हुआ नहीं अभी आपका गाने का फरमाइश जो है हम मंडे को प्ले किए थे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि राम राम सोनी जी कैमचो, और पंकज जी जुड़े हुए हैं रेडियो फैन, पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो राधे राधे, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है आपकी हाजिरी। और पाजी यूपी चौवन से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बाय बाय, और क्यों शर्मिंदा करते हो रोज हाल हमारा पूछकर, हाल हमारा वही है जो तुमने बना रखा है। और निजामुद्दीन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैसेज करते हैं बाय बाय, अब मुझे नहीं पता क्यों, अगर गाना नहीं प्ले होने के कारण ऐसा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल यहाँ गाने की फरमाइश है खेसारी लाल की आवाज़ में, डोली में गोली मार दें, तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। बिकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं त्रिलोकपुर से, गाना प्ले कर दिए हैं आपका, और नेक्स्ट फरमाइश जो है कॉल के माध्यम से है, तो एंजॉय करिए गाने को।

और हाँ, मैसेज ये लिख रहे हैं कि आज हमने के रेडियो फैन क्लब से विवेक गुप्ता साथ में रेडियो रिमझिम के एंजॉय कर रहा बाड़े। तो विवेक जी रहू स्वागत बाटे रेडियो रिमझिम में, बहुत बहुत स्वागत बाटे और एंजॉय करी रेडियो रिमझिम के।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ शाहजहाँ जी जुड़ चुके हैं मुगल बिरैचा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि फेरी खूबसूरत सॉन्ग, और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है। लिख रहे हैं कि क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसके करीब होता है, रेडियो वही सुनता है जिसका नसीब होता है। इरशाद मास्टर जी, ग्राम धनाव, रोशन टेलर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि डोली में गोली मार दें, वेरी नाइस सॉन्ग। मनीष रजाक जी हैं। एक और मैसेज लिख रहे हैं कि मेरी इस दुनिया की खुशी तुमसे है, मेरी इन आँखों की रौनक तुमसे है, अब इससे ज़्यादा मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी हर सांस और मेरी ज़िंदगी तुमसे है। और सोनी मैम कहते हैं, और सोनी मैम कहाँ गोली मरवा रहे हैं, मैं कहाँ गोली मरवा रही हूँ, और मैं क्यों मरवाऊँ गोली, मैं सीधा किडनैप कर लूँगी, उठवा लूँगी, गोली मरवाने की ज़रूरत नहीं, वो तो एक बार में जान चली गई और सारा मुसीबत ख़त्म। और हाँ, दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सो मच। और विकेश सिंह जी हैं, और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं मेरा भी गाना है, सुनवा दीजिए सोनी मैम, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और सनी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है कि आज हेलो माई चॉइस की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, तो ये आप डायरेक्टर सर से पूछे, क्योंकि हमें वहाँ से ऑर्डर नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का, इसलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं किए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज ये गाना ना बाजी का, कहे ना बाजी जी, बिल्कुल बाजी गाना। और लाल सिंह जी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि माना कि दो किनारों का कभी संगम नहीं होता, मगर साथ चलना भी तो मोहब्बत से कम नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है, बात करेंगे कौन है, कहाँ से, और जानेंगे फरमाइश को। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम में।
1: अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग
0: जी।
1: वालेकुम सलाम, जावेद आलम ग्राम धनखड़ से बोल रहे हैं मैम।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी धन्यवाद।
1: और मैं कॉल किया, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, आप कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं मैम।
0: जी जी, अब वो गाने चल रहे थे ना इसलिए।
1: जी जी, आपका नियमित लिसनर हूँ, बहुत पुराना मैं। जी जी, अफसर भैया और सोनू भैया का मैं मालूम है, उन लोग जानते हैं, और डायरेक्टर सर जो हमारे रिलीजन के डायरेक्टर सर हैं उनको भी मालूम है कि मैं बहुत काटी पुराना आदमी हूँ।
0: जी मैं भी सुनी हूँ आपको।
1: जी जी, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड भी किया होगा बहुत पहले, आप सुने भी होंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो आज मुझे खुशी यही होती है कि आप लोगों से गाना तो सुनना है, सुनवाना है, लेकिन थोड़ा बहुत बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज खुशी मुझे यही होती है कि आज हम इंडिया में रह के सुनते थे, बिहार में केवल, अभी इंडिया में ऑल इंडिया भी सुनते हैं, और विदेश के कोई भी कोने में जाते हैं तो एफएम के माध्यम से सुनते हैं रेडियो रंजन को। मैं अपने दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा आप लोगों की, आपका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों से सुनते आ रहा हूँ, 2009 से जो खुला था 5 जनवरी 2009 से, तब से मैं सुनते आ रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा साथ देने के लिए अभी तक, और आगे भी ऐसे ही देते रहिए। फिलहाल बताइए कि आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: बस मैं आपसे बात करूंगा, और मुझे खुशी यही हो रहा है कि आप लोग ये जो कार्यक्रम चला रही हैं बहुत अच्छा ढंगों से चला रही हैं, जहाँ तक जहाँ भी रखते हैं रहते हैं, तो थोड़ा मुझे खुशी यही होती है कि आप लोग मैसेज के द्वारा और कॉल के द्वारा और रिकॉर्ड के द्वारा आप हम लोग को शामिल करते हैं और बात करते हैं और शामिल करते हैं, यही मुझे खुशी होती है, और दिन पर दिन प्रगति करे रेडियो रंजन तो मुझे बेहद खुशी होती है। पर मुझे गाना सुनना है आज अफसर भैया के साथ और सोनू भैया के साथ और आपको मैम के साथ और ऑल रेडियो रंजन स्टाफ के साथ, क्योंकि काफी समय के बाद लगा है और बात भी कर रहे हैं, फिर कभी समय मिलेगा तो हम आपसे बात करेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: जी जी, मुझे गाना सुनना है रब ने बना दी जोड़ी का टाइटल सॉन्ग।
0: जी
1: जी जी, और मैं बोल रहा हूँ कि और एक गाना खासकर मैं ऑल रेडियो रिमझिम टीम को मैं सुनाना चाहूंगा। जी जी जी,
0: चलिए गाना प्ले कर दिया आपका।
1: जी जी जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया,
1: आपसे अनुमति और इजाजत लेना चाहूंगा, कभी समय मिलेगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे और इस कार्यक्रम को हंसते हंसाते मुस्कुराते आपके साथ जुड़ेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: आज के लिए नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तू ही तो जन्नत में।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुंची थी और काफी खूबसूरत गाना। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि तेरी खुशबू मेरी सांसों में महकती है, आज भी तू पास नहीं है फिर भी तू तन्हाई में दिखती है। और क्या लाजवाब फरमाइश है, मन खुश हो गया तू ही तो जन्नत मेरी। जी हाँ बिल्कुल लाजवाब फरमाइश। अनिल जी है चोटपुर से। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, सोनी जी खाना खा लीजिए। बिल्कुल खाएंगे खाना, लेकिन अभी जाएंगे तो फिर आपकी फरमाइश होगा प्ले कौन करेगा। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी जी हम लोग का नंबर कब आएगा गाना सुनने के लिए। आपका नंबर आएगा मंगलवार को ईशा जी। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी नमस्कार, राधे राधे। और लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं शिवांश चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश बिना देरी प्ले करेंगे, जो कि जम्मू से पहुंचा हुआ है। गाने की फरमाइश करने वाले हैं दीपक जी। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। और गाना है इनका आइए आपका इंतजार था अजय देवगन की, तो एंजॉय करिए, प्ले कर दिए हैं।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ मैसेज करेंगे, मैसेज है, लिख रहे हैं कि लग रहा है आज भी मेरा गाना नहीं बजेगा, सोनू कुमार चौरसिया जी हैं साउथ अफ्रीका से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, लिख रहे हैं कि फ्रॉम कोलकाता से और पूरी फैमिली के साथ सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और मैसेज ये लिख रहे हैं कि शुक्रिया मैडम जी गाना सुनाने के लिए, दीपक जी हैं जम्मू से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारे चाचू भी कई साल से शो को सुन रहे हैं। ओहो। और आगे लिखते हैं कि गम के समंदर में कहीं डूब मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना, जिंदगी में अगर महसूस हो किसी की कमी, हम भी जिंदा है ये बात कभी भूल मत जाना, बिल्कुल नहीं। और मैसेज के साथ है पाजी यूपी चौहान से। और वैसे भी हम आप लोगों को कभी भूलने वाले नहीं हैं, शायद ये सोच छोड़ के चले जाएं या फिर जो भी, लेकिन याद तो आप सभी रहिएगा हमेशा। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार मैडम जी, धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं सुहावाल अयोध्या से, और साथ में हैं इनके जितेंद्र कुशवाहा जी पहाड़पुर गाजीपुर से, और लिख रहे हैं कि आज हमारा भी गाना प्ले होगा, तो आज आपके गाने की फरमाइश जो है हम मंगलवार को प्ले किए थे और आज तो नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और कल ही किए थे। और आगे यहाँ एक और मैसेज, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि मेरा नाम है निकेश चौहान जी और मेरा घर चंपारण संग्रामपुर है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आगे यहाँ मैसेज ये लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं सोनी मैम, नमस्ते, लक्ष्मण सोनी है सासा मुसा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश है, सुशागर दीवाना जी है जम्मू कश्मीर से और गाने की फरमाइश है दीवाना मैं तेरा दीवाना। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर, और लिख रहे हैं कि डेडिकेट है सबसे पहले आपको और सभी लिसनर को। तो चलिए सभी लिसनर के साथ एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

90.4 आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी। गाने की फरमाइश करने वाले हैं शिवसागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से, और लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए, जय माता दी। और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है इंस्टाग्राम पे सोनू कुमार चौरसिया जी हैं, उनको सुनना है गाना जिनिगिया के खेला समझ में ना आवे। तो इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो टिमटिम 90.4 FM।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे हैं, सोनू जी की फरमाइश है और मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम। और शाहबुद्दीन अंसारी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कॉल पहुँच चुका है तो चलिए बात करते हैं, कौन है कहाँ से, जानते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मैं कृष्णा जी वर्मा से।
0: जी कैसे हैं कृष्णा जी?
1: सोनी जी हम पता लगा था कि हमरा से कोनो गलती हो गई बा, काजे रउदा तो सफाई आज 8 दिन से हम फोन नहीं किन था।
0: अरे महाराज ऐसा ना कहीं,
1: काहे ना कहल जाई को तो नया नया
0: आठ दिन बोल रहे बोला था नहीं रहुआ, तो 8 दिन के अंदर भी फोन रिसीव कर ले रहे हैं। हमरा ख्याल से संडे के भी फोन रिसीव भइल रहे राहुल। लेकिन 8 दिन तो ना भइल, 8 दिन के अंदर लागा रहे राहुल फोन। हाँ बुझा था क्या कि रोज सोच चला था ना ऐसे, तो खैर बता दे कौन गाना सोच के रख ले बनी।
1: 9 बजे से सुनी ले ठीक बा, हमारा मोबाइल में 4:15 बजे ले रहा है ना, अपना बात खत्म हो जा रहा है 4।
0: अच्छा तब तो हेलो माय चॉइस फिर कैसे सुने नहीं?
1: प्रभात 12 बजे से ही हेलो माय चॉइस सुनी ले।
0: अच्छा अच्छा उस सुबह ही सुने नहीं रहुआ,
1: सवेरे से लेके फिर
0: 4 बजे सामने
1: 4 बजे तक।
0: चलिए
1: सुनाई कोई सुनवानी
0: सब बढ़िया बा, रहुआ बताई का सुने माज
1: आज तो हमरा सुनने के मन ये करता गौरव शर्मा जी के गाना ये कर पियवा बसेले परदेश सखी तो करे ससुरा से नीक नहीं हटवे बा, ये तो सुनने के आज मन हमरा करता सुना जी।
0: भरत शर्मा के आवाज में
1: है,
0: भरत शर्मा जी के आवाज में। कल्पना जी के भी आवाज में बा और
1: शर्मा जी के शुरू शुरू में बहुत पुराना ही
0: गाना, फिर अमित उपाध्याय बनी उनको आवाज में बा,
1: ये सब नावका लोग ये बरा गावले बा।
0: जी जी तो भरत शर्मा के आवाज में प्ले कर देनी गाना
1: जी,
0: एंजॉय करी गाना।
1: धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किनी।
2: एगो बिरान अपना सहेली से कहतिया, उ बिरान अपना

काहे की रजनीश ना बारे बनारस मेरा रुपया घर है आ कबो कबो फांकी मार के आवे के पड़ेला छुट्टी तक हमें पर मिले लाए लोग के जब पर्व त्योहार हो जाए ते लोग के और 24 घंटा हमें पेराए के पड़े

1990 के गीत है गावल टी सीरीज में। कहतरी जेहे सखी एगो बात हमरा बुझाता, आज जेकर जेकर पति परदेश रही है ओकरा सबका बुझात हुई केहू कहत कहत नहीं के मन में छिपोले बा, बाकी हम अपन बात तारा से बतावत नहीं।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं।
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और देखते ही देखते यहाँ 1:50 हो चुके हैं शूटिंग घड़ी में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज जो हमारे पास पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि कोई भी गाना मुझे भी सुनवा दीजिए। और सजाद आलम जी जुड़े हुए हैं बेंगलोर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका सजाद जी। और बिल्कुल इतने सारे गाने बज रहे हैं, आप सारे गाने सुन लीजिए कोई भी क्या। और यहाँ एक और मैसेज है और रितेश कुमार जुड़ चुके हैं फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। लिख रहे हैं कि बाकी के दोस्तों को गाना रिक्वेस्ट सुनना भी सुनता है सुनत बानी। ओके बिल्कुल सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जेकर बलमा बशे परदेश सखी भरत शर्मा के सुपर हिट सॉन्ग पूरा बजाइए, ओल्ड इज गोल्ड। तो पूरा गाना 14 मिनट का है तो मैं तो नहीं प्ले कर पाऊंगी। दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही खूब सुन के मजा आ गई, जय माता दी। शिव सागर दीवाना जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय और बर्बादी हुई लेकिन शादी हुई तो उसे, गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और नाम क्या है आपका बता दीजिए। और शानिया जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैसेज आप जो ऐसे लाइन में की हैं एक एक एक एक वर्ड, तो वैसे नहीं करिए, पूरी एक लाइन में लिखिए कि आपको जो भी गाना सुनना है। और ऐसा मैं कुछ लोगों से सुनी हूँ कि बोलते हैं कि कई सारे मैसेज करने के बाद मैसेज जल्दी देखते हैं, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। अगर आप लोग ज़्यादा परेशान करिएगा तो फिर मैं मैसेज सीन भी नहीं करूँगी। तो मैसेज वैसा ही करिए जो कि अच्छा लगे, और मैसेज में कुछ भी ऐसा नहीं लिखिए जो सुन पढ़ के बुरा लगे। और यहाँ रत्नेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। तो आप ये बोलिए कि आपको जो गाना सुनना है शिल्पी राज के आवाज़ में सुनना है या फिर कोई और सिंगर के, जरूर कंफर्म करिए। यहाँ मिथिलेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। अरेराज से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश से लिख रहे हैं कि पवन सिंह का गीत सुना दीजिए, अखिया में कौन जादू। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। आगे यहाँ और भी एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, और हम भी जुड़ गए हैं। रहीम आलम जी जुड़े हुए हैं नरकटिया बाज़ार से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि तेरी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखाया है, मेरे उदास चेहरे को हंसाया है, मैं कर्जदार हूँ उसे खुद का जिसने आप जैसा दोस्त से मिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पाजी यूपी चौहान से है, और बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। नाम है इनका उत्तम सोनी जी जो जुड़े हुए हैं हरपुर से। एंजॉय करिए अपने गाने को, इकरार नहीं करना हद से भी ज़्यादा, तुम किसी से प्यार नहीं करना। प्ले कर दिए आपका गाना रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

104.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, हरपुर से लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा गाना सुनाने के लिए। और गाना सुन रहे हैं आप, ले हुआ है जी एप्लीकेशन पे, थोड़ा सा देर होता है, एक मिनट देर चलता है। और यहाँ मैसेज है, रेडियो फैन पंकज जी है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं वेरी नाइस सॉन्ग। राम कुमार पांडे जी है लंदन से और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि वाओ। और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे और अगली फरमाइश पहुँचा हुआ है सजनी ओ सजनी गाने की, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका विकेश चौहान जी। इंजॉय करिए अपने गाने को।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास। लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम सोनी जी, कैसी हैं आप? और मैं भी जुड़ गया हूँ। उमा शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। और मैसेज साथ है निजामुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने की फरमाइश है तो आपकी फरमाइश जो है शुक्रवार को प्ले किए थे और अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है, जैसे ही होगा हम आपके गाने की फरमाइश को प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज ये लिख रहे हैं कि भोजपुरी एक्सप्रेस में, तो भोजपुरी एक्सप्रेस अब संडे स्पेशल हो गया है। और आगे लिखते हैं कि पंकज सर को नमस्ते, कैसे बोल दीजिएगा कैसे आप, बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ है। और मैसेज के साथ हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ लिख रहे हैं कि याद बानो रेडियो रिमझिम में, रेडियो रिमझिम में समोसा बेचते थे हम, तो ये मुझे नहीं पता है कि आप रेडियो रिमझिम में कब

हाँ मैसेज पहुंचा हुआ लिख रहे हैं कि सोनी जी लंच के टाइम हो गए बा और कब आज लंच बॉक्स में नाइस खूब निमन गाना तो आज लंच बॉक्स घर से निकल आई ऑनलाइन ऑर्डर भेल बा और मैसेज करे वाला बानी रेडियो फैन पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हैं मैसेज वाली कहते हैं कि नाइस सॉन्ग

और एक खूबसूरत गाना की फरमाइश करने वाले हैं मिथिलेश जी, और इन्होंने गाना सुन लिया। बढ़ेंगे बिना देरी के अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं रक्सौल से। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका भी। और लिख रहे हैं कि चलिए सोनी जी हम भी जुड़ गए हैं, कैसी है आप? हम ठीक हैं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और फरमाइश है आपके गाने की फरमाइश, तो दोपहर समाचार के बाद हम आपका फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी हमसे नाराज़ है क्या? बिल्कुल नहीं, आपसे भी नाराज़ नहीं है। और राम जी हैं, राम कुमार जी हैं MP बालाघाट से। और समय काफ़ी कम है, जिनकी भी फरमाइशें छूट गई आप सभी की फरमाइशें जो है दोपहर समाचार के बाद प्ले करेंगे। फिलहाल अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं हम, और यहाँ अगला फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, शिवांश चौधरी जी हैं लालगंज मिर्जापुर से। तो एंजॉय करिए अपने गाने को तेरा।

Ignite.

0: एक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
1: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजी की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434, 62042434।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
13: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
12: संपर्क करें 9939365923।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर, पेट्रोल पंप के पास, गोपालगंज। उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:47 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और यहाँ मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है। विनोद शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ रंजू जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बने रहिए साथ में। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज के साथ है, नाम है इनका अजय जी, और आपकी फरमाइश है। जी हाँ बिल्कुल, आपकी फरमाइश प्ले करने में हालत है, लेकिन दोपहर समाचार का समय हो गया था, लेकिन अभी हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं श्रोणी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं भी शोर से जुड़ गया हूँ और गाना सुनना है, गाने का लिंक भेज दिया हूँ। और रोहित देहरादून से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, और गाने का लिंक आपका नहीं पहुँचा हुआ है हमारे पास। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैं फिर से जुड़ गया हूँ सो से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी दिनेश जी। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम के लिए है, और ये खास शायरी, और लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम की महफिल की पहचान है सोनी मैम, उनकी प्यारी सी आवाज़ में बसा है अरे क्या अरमान, उनकी प्यारी सी आवाज में बसा है एक अरमान है वो, जब भी वो हेलो करती हैं दिल मुस्कुराने लगता है, और जैसे हर पल खुशियों का एक नया पैगाम है। और आगे लिखते हैं कि चांद की रोशनी भी फीकी लगने लगती है जब सोनी मैम की आवाज कानों में घुसती है, रेडियो रिमझिम की हर शाम खास बन जाती है, उनकी बातें दिल को सुकून दे जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैसेज करने वाले हैं अनिश यादव जी यदुवंशी टोला से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका इतना प्यारा शायरी के लिए। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कहालबादी, बिल्कुल बढ़िया। कृष्णा कुमारी जुड़ चुकी है पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप कैसी हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ फिर से जुड़ चुके हैं अजय अमन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक उम्र गुजार दी हमने चाहत में तेरी, हाय बड़े खुश नसीब होंगे तुझे मुफ्त में पाने वाले। और मैसेज के साथ है, नाम मेंशन नहीं है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, हम भी जुड़ गए हैं सो से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। सोनू कुमार जी हैं गौसिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइएगा। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज हैं, और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि इग्नोर कर रही हैं, बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं। बीपुल सिंह जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका मैसेज आते ही शामिल किए थे, और इग्नोर हम बिल्कुल नहीं करते हैं किसी को भी। और चलिए आज की अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं, और अगली फरमाइश हमारे पास है गाने की, मेरी सांसों में बसे है एक चेहरा। तो इंजॉय करिए इस गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर, और गाने की फरमाइश इंस्टाग्राम पे पहुंचा हुआ है रंजू जी की तरफ से।

90.4 रेडियो रंजीम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं रंजी की फरमाइश। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि हेलो आय सोनी मैम जी, मैं कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी आरजे सभी लिसनर को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। हम लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है सोनू जी हैं गौसिया से, लिख रहे हैं कि आपने मेरा मैसेज पढ़ा और हम और भी खुश हो गए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा नाम बिट्टू प्रजापति है पिपरा सिवान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बने रही हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, और नमस्ते का हाल बाजी, कल हमारा गाना ना बजा बहुत दुख भइल और आज गाना सुना दे। बिल्कुल गाना सुनवा दें, पर गाना कौन सुने के बाद जरूर बता दें। और अमरजीत शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है अजय जी है अयोध्या से और उनको सुनना है गाना। गाने की फरमाइश है नाम जलता है बदन। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

ये मदहोशियां तेरी, ये स्याकारियां तेरी, ये खूनी रंगीनियां तेरी, तेरी सल्तनत का तख्ता उलट देने को है। देख तू नफरतों में घिर चुका है, सुन उन तलवारों की झंझराहट को जो तेरे खिलाफ म्यालों से खींच रही है। ये कातिल जाम, इसमें जहर है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रूम 90.4 FM में, आपके अपने कार्यक्रम में और वॉइस और चॉइस में। व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, कई सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए हैं और मैसेज है यहाँ बिट्टू प्रजापति जी हैं जी, हाँ बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए आपकी बारी आते ही हम प्ले करेंगे आपके गाने की फरमाइश को। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो सोनी जी नमस्कार, राधे राधे, कल से चल रहा था भजन और आज जाकर आपने गाना ओहो और आज जाके आपने गाना चलाया जलता है बदन। जी हाँ बिल्कुल, और कल भी इस गाने की फरमाइश आई थी और समय ख़त्म हो गया जिसके कारण हम गाना नहीं चला पाए। मैसेज करने वाले हैं मिर्जापुर से सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि यादों का कारवा कभी रुकता नहीं, मेरे दोस्त उसे मेरी यही कभी छूटते नहीं, यारी कभी छूटती नहीं। और मैसेज के साथ है पप्पू ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गाना सुनना है मैम तोता मेरे तोता मूवी से आज के गुंडा राज संतोष कुमार पटेल सूरत गुजरात से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गाना सुनना है प्ले करने की कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं शो से और हम जब भी आते हैं नए अंदाज में आते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं बिहार से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी नए अंदाज में आने के लिए। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज लिख रहे हैं कि मुझे जीना नहीं देती है याद तेरी गाने की फरमाइश है। और फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं नाम है अमरजीत शुक्ला जी, तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इन्जॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और जिनकी भी फरमाइश है अभी छुट्टी हुई है वो लोग भी एक बार मैसेज करिए कि हमारी फरमाइश से बाकी है। फिलहाल अपने गाने को इन्जॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं मरजीत शुक्ला जी की फरमाइश है और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि शिकायतें बहुत थी पर मैंने खामोश रहना सीख लिया पर तुम मशरूफ हो गए अपनी महफिल में। मैं ये जानते हैं कि हम इसलिए मैंने भी अब तुम्हारी दुनिया से दस्तक देना छोड़ दिया और मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं अमरजीत शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम मैं सुनील कुमार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी सुनील जी जो कि जुड़े हुए हैं गोपालगंज से, बने रहिए साथ में सुनते रहिए रेडियो सिम को। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुनील जी नॉट फॉर यू बट यू, बिल्कुल मैं आपकी मैसेज को तो मैं पढ़ ही रही हूँ और अब कैसे पढ़ूँ आपके मैसेज को आप मुझे थोड़ा बताएंगे। और जितनी भी मैसेज आपकी आई है मैं सारे मैसेज आपका पढ़ के मतलब शामिल किए हैं। और लिखते हैं कि तेरी चाहत मेरी, तेरी पसंद मेरी चाहत बन गई, तुझे खुश रखना मेरी आदत बन गई। और मैसेज के साथ है पप्पू ठाकुर जी। और आगे यहाँ और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम ठीक है आप कैसी हो। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं दी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ कृष्णा जी। और यहाँ विष्णु कुमार जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि थोड़ा जल्दी गाना बजा दीजिए बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है लाल सिंह जुड़े हुए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं। और गाना है पतली कमर लंबी बाल, इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और कॉल वालों से मैं बोलूँगी कि जैसे अभी के टाइम में आप कॉल करिएगा तो आपका कॉल रिसीव होगा, और गाने चलते समय में कॉल करिएगा तो फिर आप परेशान होइएगा और कॉल भी नहीं रिसीव हो पाएगा।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं हम सभी। गाने की फरमाइश करने वाले हैं लाल सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया लिख रहे हैं थैंक यू सोनी जी गुनगुनाने के लिए। और यहाँ आज अफसर जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है गाने की फरमाइश करने वाले हैं बिट्टू प्रजापति जी पिपरा सिवान से। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

वेलकम बैक रेडियो रिंजम 90.4 एफएम पे आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ 3:20 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। और अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज लिख रहे हैं यहाँ। नाइस, एक ट्रेंडिंग ई गाना ट्रेंडिंग चलत पा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 2 पा। जी हाँ बिल्कुल। और मैसेज का आता है रेडियो फैन पंकज जी और लिख रहे हैं का हलवा अफसर भाई। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि कॉल करें क्या मैम, बिल्कुल करिए। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं कि आज हेलो माई चॉइस की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई। तो आज रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं थी इसलिए नहीं हुई। और मैसेज करने वाले हैं पप्पू ठाकुर जी। यहाँ विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और कहीं से जुड़े हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आज दूसरा गाना फिर भेजो, नहीं एक ही गाना एक शो में प्ले हो सकता है, वो भी एक वीक में एक ही गाना। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। और एक और मैसेज लिख रहे हैं कि ऐसा होगा तो बर्बादी ही होगा। जी हाँ, बस ये गाने की बात है और इसे सीरियस ना लिया जाए फिलहाल। यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मेरे भाई का ओहो। और गणेश कुमार जी हैं पिपरा नारायण से, बिना देरी अगली फरमाइश प्ले करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है देहरादून से रोहित जी का, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत उत्तम सोनी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ प्रेम मदेशिया पड़ोना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और इंजॉय करिए गाने को। यहाँ मिस्टर कुमार जी जुड़ चुके हैं मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी यहाँ गाना सुन रहे हैं, गाने की फरमाइश करने वाले रोहित जी लिख रहे हैं कि गाना प्ले करने के लिए सोनी जी दिल से धन्यवाद। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि रेडियो से जब से दूर हुआ हूँ और जितने लोगों ने हमें याद किया है उन सभी को स्पेशल में रिकॉर्डिंग और सॉन्ग की फरमाइश है। और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे और अगली फरमाइश है आरजे अफसर जी की, तो एंजॉय करिए अपने गाने को प्ले कर रहे हैं। और यहाँ वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है तो सुनते हैं पहले वॉइस मैसेज को।
1: नमस्कार, आदाब और ढेर सारा प्यार रेडियो रिमझिम के सभी श्रोताओं और रेडियो रिमझिम परिवार को। श्रोताओं, मैं हूं आपका वही पुराना दोस्त अफसर अली। आज मैं इस माइक के सामने बैठा हूं और ये आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ने अचानक पलटकर उन दिनों की तरफ मुझे ले आया, जब दोस्तों हर दिन आपकी आवाजें, आपकी फरमाइशें और आपकी मुस्कुराहटें हम रोज सुना करते थे और काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं करते रहते थे। दोस्तों कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, रास्ते बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। रेडियो रिमझिम और आप सबके साथ मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। दोस्तों देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है, मैं इस शहर से दूर हूँ, इस स्टूडियो से दूर हूँ, लेकिन रेडियो से नहीं। आज भी मैं दूर रहकर रेडियो की दुनिया से जुड़ा हूँ, क्योंकि दोस्तों रेडियो मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, मेरी पहचान है, मेरा जुनून है और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। दोस्तों मुझे अक्सर आपके संदेश मिलते हैं, कोई पूछता है अफसर भाई आपकी आवाज़ कब सुनाई देगी, कोई कहता है आपकी बहुत याद आती है। और सच कहूँ ये शब्द पढ़कर दिल को जो सुकून, दिल में जो खलबली मचती है, मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों में। और तब मुझे महसूस होता है कि आवाज़ सिर्फ कानों तक ही नहीं पहुँचती, वो दिलों में भी घर बना लेती है। मुझे याद है मैं पिछली बार योर वॉइस योर चॉइस में जुड़ा था तो मैसेज में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक लंबे से ऑडियो के साथ, तो ये ऑडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आज मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया उस भरोसे के लिए, उस प्यार के लिए, उन दुआओं के लिए जो आपने हमेशा मुझे दी। अगर मेरी आवाज़ ने कभी आपकी सुबह आसान बनाई हो, अगर मेरी बातों ने कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो, अगर सफ़र में, काम पर या तन्हाई में मैंने आपका कुछ पल साथ निभाया हो, तो यकीन मानिए वो मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। दोस्तों ज़िंदगी कभी एक जगह नहीं ठहरती, हमें आगे बढ़ना पड़ता है, नए सपने देखने पड़ते हैं, नई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। आगे बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी अपनी पहचान खो देता है। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये कभी नहीं होता दोस्तों कि हम अपने लोगों को भूल जाएं। मैं आज जहां भी हूं, जो भी कर रहा हूं, उसमें आपकी मोहब्बत शामिल है। आप सब मेरी कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जो मैं कभी अलग नहीं कर सकता। साथियों बातें लंबी हो रही हैं तो आखिरी में बस ये कहना है कि अगर कभी मेरी आवाज़ ने आपके दिल को छुआ हो तो बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मैं वादा करता हूँ मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस भी मंच पर रहूँगा, अपनी आवाज़ के ज़रिए आप लोगों के दिलों तक पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा। और इसी कोशिश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को लगता है कि मैं रेडियो से दूर हूँ, नहीं, मैं रेडियो रिमझिम का एक हिस्सा आज भी हूँ। और आप लोग रेडियो रिमझिम जब सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि हम किसी न किसी कार्यक्रम में आपको मनोरंजन या फिर जानकारियों के साथ ज़रूर मिलते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक भी रेडियो रिमझिम तक पहुंचाते रहिए और अपने भरोसे और अपने प्यार को रेडियो रिमझिम पर बनाए रखिए। कोई कार्यक्रम अच्छा लगे या कोई शिकायत हो तो उसे संदेश मिला तक भी पहुंचाते रखिए। उम्मीद है कि ज़िंदगी फिर कभी ऐसा मौका हमें ज़रूर देगी जब हम इसी तरह एक साथ लाइव प्रोग्राम में आप सभी से मुलाकात करते रहेंगे। दोस्तों चलते चलते बस ये कहना है कि रेडियो रिमझिम के हर श्रोता, हर दोस्त और हर अपनों को दिल से सलाम है। आवाजें भले दूर हो जाएं लेकिन दिलों के रिश्ते कभी दूर नहीं होते। और इसी के साथ आज फिर से एक गाने की फरमाइश है और गाने का बोल है,
2: ये दोस्ती तेरे दम से है।
1: ये तो ये अगला गीत जो मेरी फरमाइश है, रेडियो रिमझिम के हर उस श्रोता के नाम करना चाहता हूँ जिसने मुझे आज भी अपने दिलों में जगह देकर रखा हुआ है। तो ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए है, आप इसे सुनते रहें दिल से। और गाना अच्छा लगे तो बस रिकॉर्डिंग या मैसेज योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम में जरूर भेजें।

0: अफसर जी, एक बार फिर से आपकी आपको दिल से शुक्रिया और इस प्यारी सी फरमाइश के लिए। ये दोस्ती तेरे दम से है और जितना दिल को छू लेने वाली ये गीत है उतनी ही सुकून देने वाली आपकी आवाज़ भी। और रेडियो रिमझिम पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यूं ही मुस्कुराते रहिए, जुड़ते रहिए और अपनी बेहतरीन पसंद से हमारी महफिल को सजाते रहिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी कई सारे मैसेज पहुँचे हुए, लिख रहे हैं कि वाह जियो गर्दा हो गया। और अफसर भाई, आपने कहा अगर आपकी आवाज़ अगर दिल में जगह बनाई हो तो दुआओं में याद रखना, बिल्कुल। और हमारी दुआ इतना ज़ोरदार है कि आपकी खुशी हमेशा दुगुनी हो। अगर शादी से आप 50% खुश हो तो दो तीन हो छोटे छोटे, और मोटे मोटे 10-12 बच्चे हो। और मैसेज के साथ हैं रेडियो फोन फैन पंकज जी, लिख रहे हैं कि शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा गाना सुन के और नाइस सॉन्ग फॉर डेडिकेट टू ऑल हिम। और आगे हैं और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि अफसर जी सच में आपकी आवाज़ और बहुत ही याद आती है आपकी आज भी। और संदीप कुमार जी हैं जादवपुर शुक्र से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल हैदराबाद से जुड़े हुए हैं शो में और मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ सुन के ही ये शो में मैसेज किए हैं। और एक यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी, आज अफसर भाई को मेरे तरफ से नमस्कार बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए। और लिख रहे हैं कि अफसर भाई, आपका गाना वास्तव में बहुत ही शानदार है और आपकी याद तो जब भी रेडियो रिमझिम सुनते हैं आपकी आवाज़ सुनने को मन तरस जाते हैं। और मैसेज के साथ है प्रेम मदसिया जी पड़ौना कुशनगर उत्तर प्रदेश से, यहाँ MD जावेद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी पुणे महाराष्ट्र से। और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग अफसर भैया। और यहाँ पप्पू ठाकुर जी हैं, लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्कार, पप्पू ठाकुर बगही बाजार कटिया गोपालगंज से, और क्या बात है। आगे यहाँ और भी है, लिख रहे हैं कि बड़ी मस्त गाना है। उमा शंकर मिश्रा जी है दिल्ली से, और भी कई सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि अफसर जी सच में वाकई खूबसूरत गाना है। तो चलिए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे बिना देरी के। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, गाने की फरमाइश है, अरे भाई अगली फरमाइश गई तो गई कहाँ। चलिए अगली फरमाइश हम लेते हैं कॉल के माध्यम से, और अगली कॉल पहुंच चुकी है, बात करते हैं कौन है कहाँ से, देखते हैं गाने की फरमाइश को। हेलो, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में। जी जी, कैसे हैं?
1: अच्छे हैं, आज इतना तो परेशान हम कभी नहीं थे।
0: कोई ना, परेशान हुए तो कॉल लग गया ना, रिसीव भी हो गया।
1: आज तो बोला पैर याद आ गया था, हमें अपनों ने लूटा गया रो में कहा तुम।
0: मेरी किस तिथि डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। फिलहाल अभी पानी हर जगह है, बारिश इतना हुआ है 4 दिन में कि पानी लग चुका है।
1: और अफसर भाई का बात सुन के तो मजा आ गया, ऐसा लगता ही नहीं कि वो रेडियो छोड़ के गए हैं।
0: तो गए कहाँ हैं? अभी भी कई सारे कार्यक्रम से, अरे तो दुबई गए हैं तो क्या हुआ, लाइव शो में नहीं है, बाकी और सारे कार्यक्रम में तो आते ही हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छा उनसे मेरा हम लोग का रिश्ता था। अब हमेशा याद रहता है, ये तो बात, जितना वो याद करते हैं उतना ही हम लोग भी याद करते हैं उनको। अगर सुनते होंगे तो सुनते ही होंगे, मैं मदनी बोल रहा हूँ और सलाम भी बोल रहा हूँ उनको।
0: तो बताइए क्या सुनना पसंद करिएगा आज?
1: आज तो हमको सुना दीजिए, उनका तो गाना सुपर से ऊपर था अफसर भाई का।
0: जी, तो आप भी कोई सुपर से ऊपर का गाना फरमाइश बताइए।
1: हमको तो दिल तो पागल है का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: जी जी, और सुनाना है सबसे पहले आपको और अफसर भाई को भी और अख्तरी को और जो भी रिव्यू रिमझिम सुन रहे हैं जहाँ से भी सभी।
0: चलिए गाना प्ले कर दिया आपका,
1: थैंक यू मैम।
0: जी एंजॉय करिए, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किया।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में, और हमारे पास और 20 मिनट समय है और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम जब भी आते हैं नए अंदाज में आते हैं, और मैसेज के साथ है संतोष कुमार जी, और आगे लिखते हैं कि माँ ने सिखाया चीज़ों को सही जगह पर रखना और बाप ने सिखाया लोगों को उनकी औकात में रखना। नाइस सॉन्ग, और मैसेज पर ही है और मैसेज पढ़ नहीं रही हैं, ये गलत बात है, ठीक नहीं है। और मैसेज पढ़कर सुनाइए मैम, हम लोगों के लिए स्टूडियो में कोई जगह है कि नहीं? बिल्कुल सभी के लिए जगह है। और रही बात आपकी मैसेज शामिल करने की, तो आपकी मैसेज जब 2:58 पे आई थी, मैं उसी समय आपका मैसेज शामिल किए थे। और दूसरी बात कि अगर गाना चल रहा है उस बीच में अगर आपका मैसेज आता है तो मैं गाना रोक के तो आपकी मैसेज शामिल नहीं कर सकती ना। गाना ख़त्म होने के बाद जितना भी मैसेज आता है हम शामिल करते हैं। आप लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे भी बुरा लगता है किसी किसी बात पे, जबकि हम आपकी मैसेज शामिल कर रहे हैं तभी आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि नहीं करते हैं। और फरमाइश छूटने की बात है तो किसी ना किसी का तो छूटेगा ही। और यहाँ है विष्णु कुमार जी, लिख रहे हैं कि हमारा गाना ना बाजी क्या, कोशिश तो पूरा बाटे कि राउर गाना बजा दें, फिलहाल राउर बारी आवे के टाइम में कोशिश करें कि प्ले करके जाएं आज राउर गाना, लेकिन कोशिश कर सकता नहीं बस। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पूछे के ही रहला कि गाना कंप्यूटर से बाजेला का, तो कंप्यूटर से तो ना बाजेला, बस गाना बाजेला राउर फोन में बाजेला और यहाँ कंप्यूटर से ही बाजेला। और मैसेज करे वाला बानी नाम बटे यहाँ के अमरजीत शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, बहुत ही अच्छा गाना लगा सुनकर, सुपर गाना। और मैसेज के साथ है, नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं आप लोग, सुनील कुशवाहा जी मैयर MP से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी कल मेरा फरमाइश नहीं बजा था, आज प्ले कर दीजिए। तो कल हम आपका फरमाइश इसलिए नहीं प्ले किए हैं क्योंकि मंगलवार को आपका फरमाइश प्ले किया है और अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए, धन्यवाद अहमद अली जी है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है पर मम्मी के सामने सीधा साधा बन जाता है। और मैसेज साथ है RJ अफसर जी, और मेरा मानना है कि मेरा तो मम्मी के पास नहीं, पापा के सामने सीधा साधा बनता है। और लिख रहे हैं कि भाई कभी पुराने अंदाज में भी आइए। जी हाँ बिल्कुल, और मैसेज के साथ है आरजे अफसर जी, और यहाँ है लिख रहे हैं कि बाय बाय। जी हाँ बिल्कुल, बाय बाय, मिलते हैं कल। और गणेश कुमार जी है पिपरा नारायण से, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अफसर सर को हमारे तरफ से नमस्कार, और अफसर सर को बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, हफ्ते में 2-3 बार जुड़ जाया करिए, और उनकी बातें हमारे दिल को छू गया। मैसेज के साथ है दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है छम्मा छम्मा गाने का, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं गोपालगंज से सुनील कुमार जी। इंजॉय करिए अपने गाने को, रेडियो टूम जिम 90.4 FM पर।

94 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे थे छम्मा छम्मा। और यहाँ कई सारे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, लिख रहे हैं कि गजब और मैसेज के साथ है नाम है अमरजीत शुक्ला जी और लिखते हैं कि शिकायतें बहुत थी पर मैंने खामोश रहना सीखा और ये शायद मैंने शामिल कर दिया। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि संतोष कुमार जी हैं लिख रहे हैं सुपर और गाना सुन पगली। इस दुनिया में 5 बादशाह हैं, 4 तो ताश के पत्तों में और 5वां वो जिनका तू एटीट्यूड पढ़ रही है। और इस मैसेज के साथ है नाम, इन्होंने भी मेंशन नहीं किया है, भाई आप लोग मेंशन किया करिए, संतोष कुमार जी हैं। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि आप कब जाएंगी मैम घर, तो मैं भी जाऊंगी बस थोड़ी देर 2 मिनट और। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अगर कोई छोड़कर खुश है तो शिकायतें कैसी, अगर उसे खुशी में भी ना देखे तो मोहब्बत कैसी। बिल्कुल सही बात। और अनिल जी हैं छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुना था सबर का फल मीठा होता है, शुक्रिया गाना बजाने के लिए। और मैसेज के साथ है सुनील जी गोपालगंज से, जी हाँ और कभी कभी सब्र का फल कोई और तोड़ ले जाता है, तो इतना भी सब्र ना रखिए कि कोई और तोड़ ले जाए। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी जी टाइम हो रहा है प्रोग्राम खत्म होने का, बाय बाय। जी हाँ बिल्कुल। और प्रेम मदेशिया जी हैं पुराना कुशनगर से और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग छम्मा छम्मा। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया, इस उलझन ने चैन से जीने ना दिया, थक के जब सितारों से पनाह ली, नींद आई तो तेरी याद ने सोने ना दिया। और मैसेज के साथ है मुकेश खरवाल जी हिमाचल प्रदेश से और गाने की फरमाइश है पगली देखा है अगरबत्ती। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए मुझे आज की शो से जाने की इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड, SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे, मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़, भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3092 या 97।

0: 6765750।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
7: All right.

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: रोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: दिल कहे रेडियो।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल कहे।

0: डॉन बात चलो।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
3: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
7: दिल कहे

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: बाल भी सुंदर
0: से हैं आप?
1: ठीक है, अपन बताइए
0: और क्या हो रहा है
1: फिलहाल?
0: अच्छा,
1: किसकी वर्षा पानी?
0: अच्छा, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: जी जी, बारिश हुआ कि नहीं? आज
0: हुआ है, इधर भी बारिश हुआ है।
1: जी जी, इधर सुना दिए की वर्षा पानी।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या?

0: आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
1: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
0: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: जी नमस्कार मैम।
13: नमस्कार,
12: मैं पप्पू ठाकुर अहमदपुर है, जस्ट बढ़िया खाना खाते हैं, जिला गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
13: जी जी, कैसे हैं आप?
12: बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए कैसे हैं?
13: हम भी अच्छे हैं।
12: बारिश हुई है मैम?
13: हाँ हाँ, तो बारिश हुआ है हल्का हल्का।
12: जैसे बारिश हुआ है हमारे यहाँ पे भी, बदली छाई हुई है चारों ओर, अपेक्षा है की और बारिश हो जाए।
13: जी
12: सबको
13: आपकी
12: मैम बोल रही है। और तो बताइए कैसे हैं?
13: मैं अच्छी हूँ, आप सब बताइए आप कैसे हैं?
12: बढ़िया है, अब दो चार रोज में हम लोग यहाँ भी रोपनी स्टार्ट हो जाएगा।
13: जी हमारे यहाँ भी देखिए, दो चार दिन हमारे यहाँ भी होगा।
12: हाँ हाँ, नहीं इधर भी हो रहा है, जिसका पहले जब बीजा गिरा हुआ है उन लोग का हो रहा है, हम लोग का थोड़ा छोटा छोटा है तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन दो चार दिन के अंदर हो जाएगा।
13: नहीं रुपाई होगा उस टाइम और हो जाए तो।
12: हाँ जी जी जी, अब सूखने का चांस नहीं रहेगा ना, अभी रुपाई हो जाएगा तो लपट पकड़ लेगा वो। गाना की शुरुआत दीजिए, सुहाना मोदी का गाना है दीवाना, राज कपूर साहब का, पते की बात कहेगा जब भी कहेगा दीवाना, ये सॉन्ग है।
13: जी जी, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट
12: करना है? हाँ, जितने पुराने लिस्नर है सब लोग सुनने वाले, हो सकता है कि कुछ नए लोग न सुने ये गाने को, लेकिन ये गाने में बहुत रहस्य छिपा है, लोगों को सुनना चाहिए ये गाना, बहुत अच्छा गाना है, जरूर प्ले करिएगा। सही है मैडम?
13: जी जी बिल्कुल प्ले करेंगे, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैं लालन पासवान बोल रहा हूँ।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: जी मुझे गाना सुनना था एक मैडम।
0: बता दीजिए।
1: मुझे गाना सुनना था अरफान फिल्म का।
0: गाना कौन सा है?
1: गाने का बोल है परदेश जाके परदेसिया भूल में जाना सिया।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी सबसे पहले तो आपको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने भी श्रोतागण है हमारे रिमझिम का सभी को हमें कुछ सुनना चाहता हूँ मेरे परिवार।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद मैडम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello?
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
8: The phone can be bajti hai to kehte hain hello.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: नमस्ते। अरे आधा घंटा तुम परेशान थे, 11 बजे सुबह हो गया क्या?
10: नहीं नहीं, अभी तो 15 हो रहा है और 15 मिनट रिकॉर्ड होगा। मेरा बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: मेरा भी ठीक है, आज तो थोड़ा राहत है।
10: जी जी, आज थोड़ा राहत है, बारिश हुआ है ना थोड़ा थोड़ा, इसीलिए।
11: फिल्म का नाम है ना।
10: और गाना कौन सा है?
11: गाना ये है कल चला जाएगा नजर।
10: और सॉन्ग किसी
11: के लिए? बहुत है वो गुड़िया और सूरज दास रंजीत है, मेरा मोहम्मद डरमा लाल बाबू है मैंने डरमा।
10: हाँ हाँ चलिए बढ़िया है। तो गाना प्ले कर रहा है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: अच्छा, ठंडी बात सर।
0: आज थोड़ा मौसम ठीक है, बारिश हुआ है ना, इसीलिए।
1: बारिश हुआ था भाई लाभ।
0: चलिए कम से कम उतना भी तो हुआ।
1: हाँ, उतना तो हो गई, बहुत बहुत बड़ी होते से पंजी आ गई बा। हाँ सर, वो गाना सुना दी हमने।
0: बता दी कौन सा गाना सुने।
1: रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, गोपी फिल्म का।
0: जी जी
1: हाँ,
0: और सब ठीक बा ना।
1: हाँ सब ठीक बा, आशीर्वाद बा।
0: चलिए ठीक है, क्या काम बा। तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: हाँ ठीक बा।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करें 87894 18744।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: इसके लिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। और तो सुनाइए, कैसे हैं?
12: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, पूर्वी चंपारण से।
12: जी और बताइए क्या हो रहा है?
11: जी अभी तो दुकान पे हूँ और आपकी कोयल जैसी मधुर आवाज सुनकर बातें कर रहा हूँ।
12: अच्छा जी,
11: और मौसम कैसा है उधर?
12: मौसम अभी तो बारिश हुआ है तो ठीक है।
11: जी जी, वैसा ही मौसम, 2 घंटा पहले हल्का बारिश हुई है, इधर मौसम सुहाना बना हुआ है।
12: चलिए बढ़िया है, कुछ तो राहत मिला।
11: जी जी, गर्मी से कुछ राहत मिली है।
12: और बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: जी फिल्म का नाम है अंदाज और गाने का बोल है आएगा मजा बता जा।
12: अच्छा चलिए ठीक है, और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
11: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ।
12: जी,
11: और दोस्तों के संजय शाहजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज जादू जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उस विकास, अभय कुमार, सुदेश कुमार, अजय कुमार, आयु कुमार, सोनू कुमार, उपभोक्त प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुनीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जश्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी भारती जी की तरह सुखी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु सुनाना चाहता हूँ।
12: जी चलिए बढ़िया, तो फिर गाना प्ले करते हैं।
11: जी धन्यवाद,
12: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ हिंसापुर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी अच्छे हैं।
0: सोनी जी बोल रहे हैं ना?
1: नहीं
0: नहीं क्या
1: सच क्या है, भारती ही है।
0: आज तो आपका आवाज हम पहचान गए कि हाँ सोनी जी बोल रहे हैं।
1: नहीं हम भारती बोल रहे हैं, सोनी जी तो उधर है। आप
0: और बताइए क्या हाल चाल है मैडम?
1: मेरा बढ़िया है।
0: और बताइए खाना वाना हो गया?
1: हाँ हाँ खाना हो गया। तो आ गए दिल्ली?
0: हम भी आ गए अपना दिल्ली अपना। अब यहाँ आने के बाद से मैडम मन नहीं लगता है।
1: जी, घर परिवार को छोड़ के जाने के बाद कहाँ मन लगता है।
0: बहुत याद आता है।
1: जी
0: जब काम में लग जाएंगे ना तो सब भूला जाएगा। हाँ आप लोग के बात रहेगा ऐसा कोई ना।
1: हाँ चलिए बढ़िया है।
0: आप लोग के तो बात आते रहेंगे हम लोग।
1: आज गाना बता दीजिए।
0: आज ओम सिंह के गाना सुनवा दीजिएगा तो होते प्यार हमारा दिल में सिकंदर हम बताएंगे।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाला है सब।
1: ओके,
0: यहाँ पर मेरा दो चार साला है उनको लिए।
1: चलिए बढ़िया है।
0: वो भी गया है मार्केट में, आज जा रहा था वो सब कंपनी, लेकिन मैं रोक दिया, बोले कि नहीं भाई फोन नहीं लगेगा, रुक जाना। तो गया मार्केट में कुछ लाने के लिए खाने के लिए।
1: जी अभी नाश्ता नहीं हुआ है? हेलो,
0: नहीं अभी तो नाश्ता वास्ता नहीं हुआ अभी।
1: टाइम तो हो रहा है इतना ज्यादा, नाश्ता कर लेना चाहिए, अब तो भोजन का टाइम होने वाला है।
0: बात ये है ना, वैशाली जो वैशाली ट्रेन होता है ना, उस वैशाली ट्रेन से हम आए,
1: लेट पहुँचे हैं,
0: तत्काल टिकट भी नहीं मिल रहा था तो हमको जर्नल में आना पड़ा। जर्नल में आने के बाद से जानते हैं कितना मुसीबत आ जाता है मैडम, बहुत ज्यादा मुसीबत झेलना पड़ता
1: है। ये तो बात है,
0: इंसान दुखे में जाता है परदेश।
1: चलिए कोई नहीं, ठीक है फिर।
0: चलिए और सब बढ़िया है ना मैडम?
1: हाँ हाँ बढ़िया है। चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके मैडम, नमस्ते।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
2: और 9097-6160-02।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955-97644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: सलाम अलैकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 92.4 एफएम में।
9: जी मैम, मुझे गाना
8: बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
9: मुझे गाना सुनना है घर राजा परदेशी तेरे दीप जलाएंगे, ये वाला गाना।
8: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
9: जी, सबसे पहले आपको मासूम कौशर जुनेद अमरान भाई अरमान भाई जगदीप भाई आयु भाई लक्की भाई समीर भाई रीना जी गिरिजी हीना जी दीना जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
8: तो अपना नाम बता दीजिए।
9: जी मैं गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से बोल रहा हूँ।
8: जी
9: पहले कॉल लगाए थे मैम, कट गया।
8: अच्छा
9: दीजी बता रहा था, आधा घंटा हो गया लगाते हुए। लग तो जाता है लेकिन थोड़ा सा आदमी परेशानी में रहता है, तो गाना सुनना पड़ता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। एक आदमी नहीं ना लगाने वाला, बहुत सारी दुनिया के लोग है लगाने वाले।
8: जी
9: आप कैसी हैं मैम?
8: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
9: हम भी सही हैं। और उधर कैसे मौसम?
8: अभी तो फिलहाल मौसम ठीक है, बारिश हुआ है आज ना इसीलिए।
9: जी हमारे तरफ तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, अभी हल्का धूप हुआ है, रिमझिम बरस रहा है अभी हल्का हल्का।
8: चलिए सब तो और बढ़िया है।
9: और सब बढ़िया है। चलिए ठीक,
8: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 92.4 FM।
9: थैंक यू।

0: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी शुक्रिया।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: अभी घर ही में है।
1: अच्छा, नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ जी हो गया है।
1: चलिए बढ़िया है
0: जी।
1: और सबको घर में कैसे हैं?
0: जी सभी अच्छे हैं।
1: चलिए तो फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
0: फिल्म है द ट्रेन और गीत के बोल है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: श्रीपाल गोयल जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, रोशन देवांगन जी हैं और तमाम साथी।
1: फिर चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैडम,
16: क्या हाल चाल है आपका?
15: बढ़िया है मैडम जी, अभी तो बारिश हुई है कल हमारे उधर।
16: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। आज मौसम ठीक है?
15: मौसम ठीक है, ठंडा मौसम है। बिहार का कैसा मौसम है, उधर हुई क्या बारिश?
16: हाँ, अभी कुछ देर पहले हल्का हल्का बारिश हुआ है
15: जी,
16: तो मौसम ठीक है।
15: ठीक है मौसम आपके उधर का भी? और अभी तो मैंने लगाया था फोन, बुधवार को लगाया था तो आज लगाया है सोमवार को आज।
16: चलिए कोई नहीं, किसी दिन तो लगाना
15: पड़ता है, अगर जाते एक आता हो गया तो लगाया।
16: अच्छा चलिए कोई नहीं, आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा, सुना दिया जाएगा।
15: आज गाना सुना है अमित संग्राम फिल्म का।
16: कौन सा गाना?
15: जी है ना कविता किसने मूर्ति और कुमार सानू की आवाज में मैडम जी, भीगी हुई है रात मगर जल रही है वाला।
16: अच्छा,
15: और क्या गाते बताऊंगा?
16: बता दीजिए।
15: भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, होने लगी बरसात मगर जल रही है वाला।
16: अच्छा जी चलिए,
15: और अजय देवगन का।
16: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
15: डेडिकेट है ना, हमारे दोस्त हैं, डेडिकेट है उनके लिए। नाम लेता हूँ अभी, मांगीलाल जी हैं और सुनील साहू जी हैं मकसूदनगढ़ से, ज्योति साहू जी हैं, हरिओम जी हैं, इनके लिए डेडिकेट और आपके लिए भी है।
16: फिर गाना

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: कैसी हैं मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, ऐसे बैठे हैं।
1: अच्छा, तुम्हारा नाश्ता पानी हो गया?
0: हाँ नाश्ता पानी हो गया है। आपका हो गया?
1: मेरा भी हो गया है। चलिए बढ़िया है, नाश्ता करके थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए। बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना नहीं है, छाया है कोहरा कहाँ जाएंगे, बहने दे पानी डूब जाएंगे, वही सॉन्ग सुनना है।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: आपको और शायद लिसनर को।
1: ओके चलिए फिर, बढ़िया है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
7: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
10: Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM।
13: नमस्कार।
12: नमस्कार।
13: कॉल हो गया, गाना भी नहीं सुने, हमारा मोबाइल का रिचार्ज भी खत्म हो गया।
12: अच्छा,
13: गाना बताए आप, आपको रिचार्ज खत्म हो गया, गाना नहीं सुन पाए, आज गाना हमारा सुनवा दीजिए।
12: नाम बता दीजिए पहले अपना।
13: परमात्मा महतो।
12: अच्छा,
13: मठिया से बोल रहे हैं।
12: बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
13: गाना
12: कौन सा सॉन्ग
13: बढ़िया, अपना पसंद का बजा देना।
12: क्या आप अपनी पसंद नहीं बताइएगा?
13: नहीं, आपका ही पसंद बजेगा। आज रिचार्ज करवाए तो अभी लगाएंगे, आज लगाते हैं तो रिचार्ज हो गया है, आज गाना 5 बजे सुनेंगे। आज पहले मेरा गाना बताइए क्योंकि मैं सुना नहीं है वो गाना, पहले जो बोला था।
12: अच्छा,
13: बजवा दीजिए।
12: जी जी, पूरा कोशिश करेंगे।
13: कोशिश करके बजाए क्योंकि गाना में सुनने को नहीं मिला है।
12: फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्ते जी, गाना सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: जी बोलिए।
0: पीछे बहुत शोर हो रहा है,
1: टीवी चल रहा है ना,
0: थोड़ा सा बंद कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है ना, उसमें आवाज होता है तो अच्छा नहीं लगता।
1: ठीक है, मैम बोल रहे हैं मुझे, मैं गोपालगंज एजेंसी में काम करता हूँ, गोपाल मोटर्स में।
0: अच्छा,
1: 10:30 वहाँ का प्रचार भी आता है मोबाइल में।
0: हाँ,
1: आता है ना रेडियो में?
0: हाँ हाँ आता है।
1: और बोल रहा हूँ ये गाना सुना है मैम, अपने माँ बाप का दिन है दुखा दिन है दुखा, यही गाना सुना
0: है। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: माँ है, प्रकाश है, शिवानी है, सीमा है, और मेरे पापा श्री कृष्णा शर्मा नाम है उनका। हम अपने परिवारों के साथ सुनना है।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: प्रसाद क्लिनिक।
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
4: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: आरती मैम नमस्कार।
15: नमस्कार,
14: मैं सुबीरपुर बोल रहा हूँ, कोरिजुआ जिला देवघर, झारखंड से मैम।
15: जी जी, कैसे हैं आप?
14: बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं मैम, और आपके रेडियो रंजन के पूरे टीम कैसे हैं?
15: कोई अच्छे हैं यहाँ।
14: सोनी मैम कैसी हैं?
15: वो भी ठीक है
14: जी। बहुत उमस है मैम। जी बहुत उमस है, बारिश हुई थी अभी दो चार दिनों से, बारिश नहीं रही, बहुत गर्मी लग रही है।
15: अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हुआ है बारिश, अब उसकी वजह से उमस तो हो ही रहा है
14: जी। आज सुना दीजिए मैम, एक फूल दो मालिक का गाना, आपका हौसले की आवाज में।
15: कौन सा गाना है बता दीजिए?
14: गीत के बोल है, कहिया ले गई जिया मेरी पहली नजर।
15: एक बार और बोल दीजिए।
14: कहिया ले गई जिया मेरी पहली नजर, के बोल आशा भोसले की आवाज में।
15: और गाना किसी को सुनाना भी है
14: जी? सबसे पहले मैं अब आपको सोनी मैम को, सोनू सर को और रेडियो रंजन के जितने भी आप लोग सबों को सुनाना चाहता हूँ, और जितने भी लिसनर हैं रेडियो रंजन के सबों को सुनाना चाहता हूँ।
15: चलिए बढ़िया है, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
14: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी ठीक हैं।
1: और बताइए क्या हो रहा है?
0: क्या
1: हो रहा है अभी?
0: अभी तो कॉल लगा रही थी आपके पास।
1: अच्छा जी, तो आज कॉल तो लग गया जल्दी।
0: हाँ
1: चलिए बढ़िया।
0: बहुत देर हो जाता है लगाते लगाते, नहीं लगा है।
1: और सब बताइए, सब कोई घर में कैसे है?
0: सब कोई ठीक है घर में।
1: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिए आज?
0: सुना दीजिए ना सोना ना चांदी सारी दुनिया।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी मैम, आपको और दिव्या मैम को और अपने घर में सभी को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आज।
1: जी जी, अपना नाम बताते जाइए।
0: मनीषा कुमारी।
1: जी चलिए बढ़िया है, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: जी मैम, बाय मैम।
1: बाय बाय।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555-67666।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

फाइव एंड हाफ गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुके।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करतनी रउरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शोटे वर्जा भार रवा सभी के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे की कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथ और दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बांटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लव उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।
1: ए मला भाई हाँ। अभी कार का हम के ए पार कदला जा

0: अब हम जा तनी
1: बे मा जोगी बाबा
0: का हो
1: रुवा जाई मत
0: का बात हो
1: महाराज तबे सरवा मार जे भजन जर गौनी खंजड़ी जनी डिम डिमौनी
0: हां
1: तनी हमरो एगो चुटकीला सुन ली ओकरा बाद चल जाए।
0: अच्छा सुनाओ, हमके समय तो बा नहीं लेकिन सुनाओ, हम तार चुटकीला सुन ले तनी।
1: समय रुवा निकाल ली।
0: हां चल बोलो।
1: ए रुदल भाई।
2: हां भाई।
1: है सबके कह दे कि जे बैठल बा उठ के खड़ा हो जा।
2: अच्छा भाई।
1: आए पूछुन भाई।
2: हां
1: हौ किलाट जो रुवा बजाओ तनी। रउआ कह दी कि जे खड़ा बाबू बैठ जाओ। हाँ ठीक है, यह बात है। सुने के सब लोग ध्यान लगा के सुन ले कि एक जने पंजाबी जी रहनी
3: वाह
1: तो वहाँ के दिल में विचार यानी मन में ये विचार कोई कि हम चली विदेश में तनी घूमे खाती विदेश वहाँ के कबो गोल ना रहनी।
0: हाँ
1: लोग कहल कि भाई महाराज धनिक बोल रहे बनी चल जाई विदेश जाके घूम आई बस फौरन वहाँ के का कोई नहीं कि टिकट कटौनी आ जाके विदेश में वहाँ के उतर गईनी। जब उतर गईनी तो यहाँ के कबो तो विदेश में आयल रहनी ना। अब वहाँ के विदेश में लगनी घूमे घूमते घूमते घूमते वो किराना के दुकान पर वहाँ के गईनी पंजाबी जी। जब एमे का हाकत रहो घोड़ा हाकत रखा। जब पंजाबी जी गईनी एगो किराना के दुकान पर तो किराना के दुकानदार से पूछता नहीं कि अबे भाई साहब अरे हम इधर से आए हैं। अब यहाँ के हिंदी बोलल शुरू कहनी भाई साहब हम इधर से आए हैं वो सामने क्या चीज रखे हो। तो दुकानदार कहता का कि सरदार जी वो सामने हम जो रखे हैं उसका नाम पूछ रहे हैं। तो सामने क्या चीज रखा था दुकानदार? एक सेंट का सीसी रखा था। और सरदार जी उसी को पूछ रहे थे कि आखिर में बात क्या है कि वो क्या चीज है। पूछे क्या कि भाई दुकानदार वो सामने क्या रखे हैं? दुकानदार ने कहा कि ये एक सेंट है आ तो इसको बेचेंगे या तो हाँ बेचेंगे आ तो इसका कीमत आ तो 500 रुपया है। सरदार ने फौरन अपने पॉकेट में हाथ डाला और 500 निकाल कर नोट दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने क्या किया पैसा रख लिया। तब कहता है कि सरदार जी
0: हाँ
1: सेंट को दे दे तो हाँ हाँ सेंट मुझे दे दो। तो दुकानदार कहता है कि बस 2 मिनट ठहरिए मैं अभी अंदर से ला कर दे रहा हूँ।
2: हाँ।
1: तो सरदार जी कहते कि नहीं
2: अच्छा
1: मुझे जब चाहिए तब इसी सेंट को सामने जो रखे उसी को चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि सरदार जी यही चीज यही ढक्कन यही लेबल यही सामान मैं आपको गोदाम से निकाल कर दे रहा हूँ तो क्या फर्क है। सरदार ने कहा कि नहीं मुझे जब चाहिए तब इसी सेंट को चाहिए। दुकानदार कहता कि अबे सरदार तुम पागल हो गए हो क्या? यही सामान यही चीज यही ढक्कन यही लेबल मैं तुझको गोदाम से निकाल कर दे रहा हूँ तो क्या फर्क है। ये प्रचार के लिए रखा हूँ ये नमूना के लिए रखा हूँ ये एडवर्टाइज के लिए रखा हूँ। सरदार ने कहा कि नहीं मुझे जब चाहिए तब इसी सेंट को चाहिए जो काउंटर पर रखे हो। दुकानदार ने परेशान हो गया सेंट उतारा सरदार के हाथ में थमा दिया। सरदार ने ढक्कन खोला और पूरे सेंट को अपने हाथ पर गिरा लिया। जब पूरे सेंट को अपने हाथ पर गिरा लिया तो आधा सेंट इस दाढ़ी में आधा सेंट इस दाढ़ी में और मोछ में जब लभेरना शुरू किया तो विदेशी दुकानदार पूछता है कि सरदार जी आप पागल हो गए हैं क्या? ये विदेशी सामान है इसे बचा कर रखते तो नो मालूम कितना दिन तक ये काम देता बताइए। आप पूरे सेंट को गिरा लिए आधा सेंट इस बगल आधा सेंट इस बगल लभेर रहे आखिर बात क्या है। सरदार ने कहा कि तुम बेवकूफ हो तुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज है। अपने मोच को बता रहा है सरदार कि तुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज है। अरे ये मोच है मोच ये भारत की शान है शान। दुकानदार से कहता है कि तुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज है। अपने मोच को बता रहा है कि ये भारत की शान है शान। दुकानदार कहता है कि बाप रे बाप भारत के शान 500 रुपये का एक बार सेंट लगा रही है इसे खरीदना जरूरी है। दुकानदार ने पूछा कि सरदार जी ये भारत के शान को आपने रखा है इसको बेचेंगे आ तो क्यों नहीं बेचेंगे आ तो इसका कीमत बताइए आ तो 1000 रुपया दीजिए। बस फौरन दुकानदार 1000 रुपया निकाला सरदार जी के हाथ में थमा दिया।
2: अच्छा
1: तो सरदार जी से कहा कि तब मुझे भारत के शान को दीजिए। तो सरदार ने कहा कि तब मुझे आप एक बलेट दीजिए। दुकानदार ने एक बलेट दे दिया, सरदार ने अपने हाथ में ले लिया और दुकान से थोड़ा पीछे हटकर अपना पैंट का चैन खोलना शुरू किया। जब पैंट का चैन खोलना शुरू किया तो दुकानदार कहता है कि अबे सरदार वो क्या कर रहे हो। तो सरदार कहता है कि सुनो, ये एडवर्टाइज के लिए रखे हैं, ये नमूना के लिए रखे हैं, ये प्रचार के लिए रखे हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं, यही सामान, यही चीज, यही लेबल मैं तुझको गोदाम से निकाल कर दे रहा हूँ, तो क्या फर्क है।
0: अब वहां से बिरजभार जा रहा बने 14 कोस के बलुआ रेत बा।
2: अच्छा,
0: उहे हेल के जा रहा बने। कैसे
2: कैसे जाता रहे
1: बाबा हो
0: का?
1: अब तो नहीं पर से तरह के उतारिये दलबानी हमरो कुछ सुनिये लालो।
0: हाँ बहुत सुननी
1: है। ये खुड़ारी खुरहुर रास्ता जोन बा।
0: हाँ।
1: यह धोलो आ सीधे सूर्यले चल जाए जहाँ मन करे तहाँ जाए के।
0: लेकिन ए मला आई जी से देखा था नहीं, खाली बलुआ रेते बा। अरे 14 कोस के

0: देखिए जो बिरजा भार वो 14 कोस के बलुआ रेत में धस गए, इनका कोनो ज्ञान नहीं है। लेकिन देखी जौन इनके ब्याही बाड़ी हेमंती उ महल के अंदर सुतल बाड़ी तब का सपना देखतड़ी,
1: का देखतड़ी,
0: अरे सामी मोरा गईले हो रामा, अरे वही बालू रे तवा हो, अरे सामी मोरा गईले रामा, अरे वही बालू रे तवा हो, हे किया रामा

0: आतंक की हुई पुष्टि। और नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी उफान पर, वाल्मीकिनगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 प्रखंडों में नव स्थापित डिग्री महाविद्यालयों में आज से पठन पाठन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के कासिलकॉ में आयोजित समारोह के दौरान इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की उच्च शिक्षा के लिए अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की।
1: आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम हो।
0: श्री चौधरी ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत छूटी हुई पात्र महिलाओं के खाते में 25 जुलाई को पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी।
1: 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई हैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों,
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक साथ 211 डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य का शुभारंभ किया।
2: नए डिग्री महाविद्यालयों में पहले सत्र में 6 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की पढ़ाई होगी। इन महाविद्यालयों में अब तक 60,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। नव स्थापित महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं इन महाविद्यालयों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए 3,600 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर भी मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने राज्य में एक साथ 211 डिग्री महाविद्यालयों की शुरुआत को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नए महाविद्यालयों की स्थापना से राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। राज्य मंत्री परिषद ने बिहार ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई नियमावली के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर दर और शुल्क की अधिकतम सीमा तथा उनके निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया तय की गई है। नियमावली में होल्डिंग, पंचायत क्षेत्र में व्यापार और उद्योग, पंचायत की ओर से दी जाने वाली सेवाओं तथा अन्य शुल्क से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। नई नियमावली लागू होने से ग्राम पंचायतों को कर और शुल्क की वसूली में आसानी होगी। इससे पंचायतों की स्वयं की आय ओएसआर बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मोटर वाहन टैक्स में बदलाव को भी मंजूरी दी है।
3: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में एआई से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। बैठक में केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिले में समेकित थारू विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की अवधि वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य के काराओं में अनुबंध के आधार पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों का मासिक मानदेय 18,800 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने जेल में बंद कैदियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम आश्रित को मुआवजा भुगतान के लिए नीति बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यटकीय सुविधाओं को विस्तार देना है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों के मामले में राज्य देश भर में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के माध्यम से 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।
4: बिहार पर्यटन क्षेत्र का पुनर्गठन कर प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों का स्थापना की दिशा में कार्य किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और पर्यटकों को सुविधा देने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, पर्यटन नीति और निवेश प्रोत्साहन से राज्य में लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। यह बिहार के युवा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बड़ा अवसर है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के काढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इनपुट पर सीतामढ़ी पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। पुलिस के अनुसार इनके पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से संपर्क की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं तथा उनके डिजिटल संपर्कों की जाँच की जा रही है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कचरा भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक दारोगा का पिस्टल और मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज नालंदा स्थित हुएन सांग स्मारक परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने नालंदा की अकादमिक विरासत को विश्व की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नव नालंदा महाविहार के प्रयासों की सराहना की और संस्थान की भावी योजनाओं में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। जाने माने शिक्षक और जन सुराज नेता डॉक्टर केसी सिन्हा भाजपा में शामिल हो गए हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। डॉक्टर सिन्हा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वहीं जन सुराज नेता बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने युवाओं से कौशल विकास अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में भी कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान जिले के महाराजगंज में सबसे अधिक 81.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों में, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर समस्तीपुर जिले के सरायरंजन के मूसापुर में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं गया जिले में बिजली गिरने की घटना में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला बलान और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। आज बराज से 1,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
2: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी अभियंताओं की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। विभाग ने तटबंधों और संवेदनशील स्थलों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ने गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही एहतियात के तौर पर नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर शिवहर में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। सीतामढ़ी में भी बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि पलासी और सिकटी प्रखंड में बकरा और रतवा नदी लगातार कटाव कर रही है, इससे निचले इलाकों में पानी फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोसी नदी का जलस्तर भी खगड़िया में लगातार बढ़ रहा है। जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी शिव कुमार दत्ता का आज 68 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वे बिहार की ओर से संतोष ट्रॉफी खेल चुके थे। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत परवाहा में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिला अंतर्गत चीटी रोड स्थित टोल प्लाजा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 30 मवेशियों को बरामद किया है। इस मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र से एसएसपी, एसटीएफ और बिहार पुलिस की टीम ने एक तस्कर को 109 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के 211 नई डिग्री महाविद्यालयों में पठन पाठन का किया शुभारंभ। कहा, भागलपुर में खुलेगा एआई और कंप्यूटर विश्वविद्यालय। राज्य मंत्री परिषद ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए बिहार ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी। सीतामढ़ी जिले के टकोर गांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। पाकिस्तान से संपर्क की हुई पुष्टि। और नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी उफान पर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेमंती।
1: हाँ मामी।
2: अरे बाप रे बाप, ये पहले ते बता कि हे 12 बजे रात के तोरा अले के कोनो तुक तो ना रहल हमरे लगे।
1: देख हम सपना देखनी कि हमार पति देव बलुआ रेत में धस गेल बड़े। हे बाबी,
2: बलुआ रेत में?
1: हाँ, चला हमरे पति देव के जिंदा करा।
2: हेमंती,
1: हाँ
2: देखो, हम बार बार उनके मना कैनी कि तू सोरठपुर मत जा, सोरठपुर जा ना पैब तहरे मान के बात बा नहीं।
1: हाँ,
2: अबे बहुत से ऐसा खटका बा जहाँ से वो वापस ना आई है। अब हमरा के तहनी के परेशान कर बलुनी, दूसर बात नहीं खे। ठीक बा हेमंती।
1: हाँ,
2: जब तू हमरा लगे आ गयलू।
1: हाँ,
2: तो हमरे नाव सतीश सांवरी हुए, हमसे के ज्यादे जादू में जानकारी बा, केहू के ज्यादे जानकारी नहीं खे। हम 12 बरस के बाद आगे, 12 बरस के बाद पीछे ले जानी ले।
1: अच्छा, चला मामी।
2: एगो काम करो।
1: हाँ,
2: जल्दी तू जादू के रंथ सजाओ।
1: अच्छा,
2: हम चलता नहीं लेके जादू के रंथ पर बैठ के बालू धस रेता में।

0: अरे ई का देखत नी कि हमार मामी आइल बारी, हाय हमार ब्याही भी आ गई। मामी मामी
1: आरमन बक बार मन पे मन मन बसना
0: मामी
1: आरमन।
2: अरे तोहरे चरनिया में मामी, अरे भगिना

0: ना स्वामी, आखिर हम यहाँ तक आइए रौरा के देखे खातिर कि हमार पति देव बनुआ रेत में धस गए स्वामी, धस गए।
1: अब एकर कहानी आप सबके पांचवा भाग में सुने के मिली बिरजा भार के।
2: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही, कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई। 98-527-88-291 नंबर बाटे, इन नंबर पर कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84-28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल हुई। परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं, पैर छू के प्रणाम करता नहीं, चलता नहीं, अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ, एगो नया कहानी के साथ, फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा, अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत, हंसत रही मुस्कुरात रही, नमस्कार, राम राम।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
4: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
5: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
4: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
5: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
4: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
5: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
4: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
5: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
4: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
5: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
12: कॉल करें 70

0: 7075763700 या 7070742400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

जो भी देख यही पूछ है किसकी जगाती है कयामत कोई।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम हर हर

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

0: मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट Grade 1, टीचिंग असिस्टेंट Grade 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी आमंत्रित कर रहा है शिक्षक नैदानिक अनुदेशक के एक पद के लिए आवेदन। ये पद OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। भर्ती का माध्यम रहेगा सीधी भर्ती। रिक्तियों का विवरण, पात्रता मानदंड, कट ऑफ तिथियां, आवेदन प्रक्रिया, सामान्य नियम शर्तें, भर्ती नियमावली तथा आवेदन की अंतिम तिथि सहित विस्तृत अधिसूचना आप देख सकते हैं संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.aimskalyani.edu.in। CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। टेक्नीशियन इस ट्रेड से होने चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, फाउंड्रीमैन, मैकेनिक, मोटर वाहन, डीजल और रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cmeri.res.in। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक निदेशक शैक्षिक, शैक्षिक अधिकारी हिंदी, पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in। अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक सी, कनिष्ठ अभियंता सी और पुस्तकालय सहायक सी। पदों के लिए 5 रिक्तियां उपलब्ध हैं, कनिष्ठ अभियंता के लिए 2 तथा पुस्तकालय सहायक के लिए 1। इन पदों से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार से आप प्राप्त कर सकते हैं इस वेबसाइट पर www.iuac.res.in/vacancies। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
12: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
11: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9939365923।
14: प्रसाद क्लिनिक,
15: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
14: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
15: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
16: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
17: रेडियो एमजेम।
16: सुनो दिल

0: ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमरीका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनवीटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत में ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और 9 सैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
13: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
13: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
13: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
18: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
19: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86-034-48-652 पे।
20: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
21: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
20: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले के 9 प्रखंडों में खुला राजकीय डिग्री कॉलेज, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। स्कूल वैन में फंसकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा मासूम बच्चा। 2 कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने जारी किया 50,000 रुपए का इनाम। ज्वेलरी की दुकान में लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। और जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। ग्रेजुएशन करने के लिए अब बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने जिले के 9 प्रखंडों में राजकीय डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर दी। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार में 200 से अधिक डिग्री कॉलेज की शुरुआत की, जिसमें गोपालगंज जिले को भी 9 डिग्री कॉलेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान पंचदेवरी में डीएम समीर सौरभ और बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। सिधवलिया और बैकुंठपुर में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब डिग्री कॉलेज के शुभारंभ होने से ग्रामीण छात्रों को घर के पास ही ग्रेजुएशन की सुविधा मिल सकेगी। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों में इसको लेकर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रेडियम द स्कूल के एक वैन में 11 साल का एक बच्चा फंस गया और वैन चालक लगातार गाड़ी चलाता रहा और यह बच्चा गाड़ी में फंसकर घसीटता रहा। 1.5 किलोमीटर तक इस गाड़ी में बच्चे को घसीटा गया। ड्राइवर को जानकारी नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे। इसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी चालक ने गाड़ी रोका और वहां से फरार हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस मासूम बच्चे को, जो गाड़ी में फंसा था, उसको वहां से निकाला गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्चे का इलाज चल रहा है। यह बच्चा नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के विजय गुप्ता का 11 वर्षीय पुत्र ईशान कुमार बताया जा रहा है। यह स्कूल में पढ़ने के बाद लौट रहा था और वैन से उतरते समय यह उसमें फंस गया और वैन चालक गाड़ी लेकर जाने लगा। काफी दूर तक गाड़ी में यह बच्चा घसीटता रहा और स्थानीय लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते चिल्लाते रहे। फिलहाल बच्चे के परिजन काफी परेशान हैं और इसका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में जिले के 2 कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसमें एक कुख्यात आरोपी मन्नू यादव है। यह ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला गांव के ललन यादव का पुत्र है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी में पुलिस को सहयोग करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसके लिए कोई भी व्यक्ति स्थानीय थाना या पुलिस अधीक्षक को भी फोन कर इसकी सूचना दे सकता है। मनु यादव पर लूट, डकैती सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और यह लंबे समय से फरार चल रहा है। इसके अलावा कुख्यात अपराधी मनिंदर मिश्रा, पिता छेदी मिश्रा, जो कटिया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का रहने वाला है, इस पर भी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मनिंदर मिश्रा के विरुद्ध भी हत्या, लूट, डकैती, चोरी सहित कई अन्य गंभीर आपराधिक मामले कटिया, भोरे, विजयपुर तथा नगर थाना गोपालगंज में दर्ज है। यह अभी लंबे समय से फरार चल रहा है। पुलिस ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसकी गिरफ्तारी में पुलिस की सहयोग करेगा, पुलिस को सूचना देगा, उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। भोरे थाना के जगतौली ओपी क्षेत्र के लाला छापर बाजार के दीपक ज्वेलर्स में हुई लूट कांड में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस लूट कांड में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया था। इस कांड में पहले भी 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बार फिर से पुलिस ने इस मामले में भोला अंसारी उर्फ बाबूदीन अंसारी, जो देवरिया जिला के भाटपा रानी के खड़ेसर का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया है। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंकित सिंह, यह भी उत्तर प्रदेश देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के जंजीरहा का रहने वाला है, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने इस लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आज इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस कांड में

पंचायतों से आए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन 2024, बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008, बाल श्रम अधिनियम 1986 के संबंध में भी जानकारी और सुझाव दिया गया। जिले के 234 पंचायतों से आए हुए श्रमिकों को नाश्ता एवं भोजन के साथ एक दिन की मजदूरी भी 413 रुपए एवं मार्ग व्यय अधिकतम 100 रुपए की दर से भुगतान भी किया गया है। जिलाधिकारी ने भूमि उपलब्धता के कारण लंबित योजनाओं का शीघ्र समाधान करने, भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, विवाह मंडप, स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जन वितरण प्रणाली की दुकानों का भी नियमित निरीक्षण किया गया। खाद्यान्न वितरण की निगरानी तथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। गोपालपुर थाना की पुलिस ने 399 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को बरामद किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बोलेरो और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिपाया पुल के पास छापेमारी की और यहां से शराब के इस कंसाइनमेंट को पकड़ा गया। इसमें 381 लीटर देशी और 18 लीटर विदेशी शराब है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान मोहम्मद आस्तिक, पिता मोहम्मद हसीन, साकिन कमला मोहल्ला, बनारस बैंक चौक, जेल चौक, जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया और बलिंदर यादव पिता राजेंद्र गोड़ तथा सूरज कुमार पिता प्रभु शाह, ये दोनों मुजफ्फरपुर के मीनापुर के निवासी हैं, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और इनकी एक बोलेरो गाड़ी और शराब को जब्त करने के बाद आज तीनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कटिया थाना की पुलिस ने भी 95 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वाहन जांच के दौरान करकटहा नहर के पास छापेमारी की, जहां मोटरसाइकिल से 90 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में संदीप पाल, पिता बंका पाल, साकिन मलवा बार बन रही थाना बघौज घाट जिला देवरिया को गिरफ्तार किया गया। इसके मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर खुदी छापर गाँव में भी छापेमारी की गयी। यहाँ नथुनी चौहान, स्वर्गीय गणेश चौहान, थाना कटिया, जिला गोपालगंज को भी 5 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को आज उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी कोट नरहवा में छापेमारी की और यहां सुकुल कुमार राम को शराब के साथ पकड़ा गया। इसके पास से 13 लीटर से अधिक देशी शराब मिली है। इसकी मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के धर्मनाथ राम का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस अब इसे भी पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज रही है। जादोपुर थाना की पुलिस ने भी पॉक्सो मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त बादल कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी जादोपुर के पताहरा गांव के दशरथ राम का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी को सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया और इसे आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने में अपने मोबाइल फोन से ही रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले के 9 प्रखंडों में खुला राजकीय डिग्री कॉलेज, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। स्कूल वैन में फंसकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा मासूम बच्चा। 2 कुख्यात अपराधियों पर पुलिस ने जारी किया 50-50 हजार रुपए का इनाम। ज्वेलरी की दुकान में लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। और जिला विकास समन्वय समिति की हुई बैठक। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सुनो सो एसएमएस फरमाइश के साथ रेडियो रेम 6.4 FM पे समय 9:26 हो रहा है हमारे स्टडी गिरी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप सभी को तो पता ही है कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना है और अपने गानों के साथ इंजॉय करना है। तो कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें हमारे नंबर 7277165696 पे, और जो भी मैसेज हमारे पास पहुँचेंगे उस मैसेज को शामिल करते हुए आपकी फरमाइश हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है और पहला मैसेज हमारे पास लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से और सॉन्ग सुनना है प्यार माही का। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। उससे पहले मैसेज किए हुए लिखे हुए हैं कि हाय कैसे हैं आप, हम लखन पांडे, मैं आवारा एक बंजारा बजाए। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और हमें लगता है कि आपके गाने शायद नए हैं। गाने कुछ इस चेक करते हैं और नए होंगे तो रुकेंगे और पुराने होंगे तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मुझे आज ये सॉन्ग सुनना है, हमें तुमको दिल ये दे दिया, हमने तुमको दिल ये दे दिया ये। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और इस मैसेज को करती हैं शबीना फ्रॉम दुलुलिया से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है गुड इवनिंग सर, तो बिल्कुल गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अनिश यादव विलेज डुमरा यदुवंशी टोला डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और हमें भी गाना सुनना है तो स्वागत है आपका। और हाँ, यदि आपके गाने हम नहीं सुनाए होंगे तो भी आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और हमें लगता है कि आपके गाने शायद सुनाए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय सुनो भाई कैसे हैं, गाना सुनना है, तो बिल्कुल स्वागत है और गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी और श्यामपुर से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो सुनो जी, मैं भी आ गई, कैसे हैं आप और मैं रेखा पांडे, बहुत दिन बाद आई हूं, मेरा भी गाना प्ले कीजिएगा। बिल्कुल प्ले करने की कोशिश रहेगा और आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और पहले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं लखन पांडे जी की और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एम 6.4 FM पे।
1: प्रसाद क्लिनिक
2: स्त्री रोग ल्यूकेरिया

0: रेडियो MCM 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे लखन पांडे जी, और इन्हीं के फरमाइश के साथ अभी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे आगे भी कई मैसेज पहुँचे हुए, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले दिलीप राम दिल्ली से हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर कैसे हैं, हो खाना पीना हो गया। मंजीत कुमार सुपौली, गाना सुपौली से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। गाने के बोल देते हैं हमारे खातिर तोहरे की दुनिया में भिजवले बाड़े, भगवान ने बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बाड़े। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर, रंजन कुमार पंजाब से जुड़े हैं और हमारा भी फरमाइश है, गाने का बोल है तेरे इश्क में नाचेंगे। ओहो, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा क्या होगा जी, तो बिल्कुल आपके गाने बजेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सपनों की दुनिया में हम होते चले गए, मदहोश न थे पर मदहोश होते चले गए, ना जाने क्या बात थी उस चेहरे में, ना चाहते हुए भी उसके होते चले गए। मैं आवारा एक बंजारा, वेरी नाइस सॉन्ग। और इस मैसेज को करते हैं मनीष रजक, फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुपर सॉन्ग मैसेज करते हैं श्यामपुर से। और सत्यम जी कहते हैं कि कल मेरा गाना नहीं बजा था, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। लेकिन कल आपने नाम दिया था विकास और आज दिए हुए सत्यम, क्या बात है। एक व्यक्ति दो दो नाम से, तो ऐसा नहीं करना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि मैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, और मुझे एक सॉन्ग सुनना दीजिए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, आज हमारा फरमाइश बजा दीजिएगा, उसी रोज का बाकी है हमारा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश, जो भी मैसेज पहुंचे हुए जितना हमें समय मिला है उतना में कोशिश करेंगे कि पूरा हो, और जितना हो सकेगा उतना पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और तो चलिए मैसेज को सिलसिले को रुकते हैं और गाने के साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। दूसरी गाने एंजॉय करते हैं हम सभी शमीर आलम की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, प्यार नहीं करना जहान सरा कहता है, डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई, गुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई, सुफिया वसीम, शगुफा करीम, रुबीना नाज, शफाक शाहजहाँ, हीना हजरा, अनमका गुड़िया, सबीता ब्यूटी, सबनम जरीन, सबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, शबीना, शब्बा, आशा, निशा, तब्बू, सालदा, संतरा और आपको। तो चलिए हम भी हैं सबके साथ, तो आपके साथ क्यों नहीं होंगे। गाने को प्ले करते हैं, सुनते हैं।
1: सब्सक्राइब नाउ।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0975-75।
6: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़, SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
5: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
4: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेज को देखते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि मंकेश शाहनी भैरवगंज वेस्ट चंपारण से, सुनो जी नमस्कार, आज मेरा गाना बजा दीजिएगा नूरी फिल्म का। तो बिल्कुल स्वागत है आपका गाने का, फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग, प्यार नहीं करना जहान सरा कहता है, थैंक्स भाई, अब मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। तो बिल्कुल आप ही के गाने हम प्ले करने ही वाले हैं और इस मैसेज को करती हैं शबीना। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मेरा सॉन्ग प्ले हो गया है क्या सर? तो जी नहीं, आपका सॉन्ग अभी प्ले नहीं हुआ है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय सर, मैं भी आ चुकी हूं और मुझे भी शामिल कर लीजिए, निशा पांडे नाइस सॉन्ग, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आगे बढ़े, अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

काफी प्यारा सॉन्ग। रेडियो रमछिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप भी बने हुए तो बिल्कुल बने रहें, अपने स्थान को इधर उधर ना करें, नहीं तो आपके गाने नहीं बज सकते हैं, क्योंकि जब स्थान बदलेंगे तो गाने के नंबर भी बदल जाएंगे। आगे मैसेज पहुंचे हुए और अगले गाने की फरमाइश करती हैं रेखा पांडे जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और कुछ अलग अंदाज में, और मौसम भी आ ही गया है देशभक्ति का, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है देशभक्ति देश रंगीला रंगीला। इसलिए इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए और मैसेज पहुँचा लिखा गया कि थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो सर, आपको है फरमाइश कब बजेगा? तो बिल्कुल आपकी फरमाइश बजेगा, आप मैसेज को स्थगित करें, आप स्थिर रहे तो ही तो फरमाइश की नंबर आएगी आपकी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते सर, मैं अर्चना चौहान गोपालगंज से, आप कैसे हैं? खाना पीना हो गया है? मैं फर्स्ट टाइम मैसेज की हूँ, तो बिल्कुल खाना तो नहीं हुआ है, अभी तो भूख लगी है जोरों से। फिलहाल कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सभी का साथ है तो कुछ बर्दाश्त हो रही है, और गाने एंजॉय करने में लगता है कि समय कट जाएंगे। आगे भी मैसेज पहुंचे हुए और लिखा गया है कि हेलो गुड इवनिंग सोनू सर जी, मैं भी आ गई हूँ, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि आपका दिमाग खाने तो हमारा दिमाग क्या खाएंगी, हमको तो खुद भूख लगा है। और कहते हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल गाने सुनाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करती हैं शाहजहाँ विलेज मुगल ब्रिजा से, और लिंक भेजी हैं, तो कोशिश आपकी फरमाइश हम पूरी कर पाएँ। फिलहाल अगले गाने हम प्ले करते हैं रेखा जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने। रेखा जी, आपसे निवेदन है कि आप जब भी गाने का फरमाइश करिएगा तो रेखा जी वाला ही गाना का फरमाइश करिएगा, क्योंकि एक हमारे ओल्ड इज गोल्ड रेखा जी हैं, और उनके गाने हम सभी सुनते हैं। हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम चलता है, उसमें बड़ी मज़ा आता है सुनने में उनके जो भी गाने हैं, तो आप उनके ही गाने को फरमाइश कीजिएगा जो सुनने में मज़ा आए। फिलहाल आपके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम छिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और आगे कई मैसेज है और समय देखे तो बहुत कम है। आगे मैसेज पहुंचा, वो लिखा गया है कि मेरी इस दुनिया की खुशी आपसे है, मेरी इन आँखों की रौनक आपसे है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरी हर सांस और ज़िंदगी आपसे है। हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोल लीजिएगा। और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुपर, अब वो दिन आने ही वाला है जिस दिन हम अपना तिरंगा, प्यारा तिरंगा झंडा सबके साथ लहराएंगे। बिल्कुल बहुत करीब के हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग सोने सर देश रंगीला रंगीला, और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी, और इनके तरफ से भी गाने की फरमाइश है और कल की बाकी है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार जी और पंजाब से जुड़े हुए, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है तेरे इश्क में नाचेंगे। तो चलिए आपकी गाने के फरमाइश को प्ले करते हैं। एक और हमारे श्रोतागण हैं जिनका नाम है मनीष जी, और आपकी फरमाइश हम पूरी नहीं करेंगे आज, क्योंकि आपकी फरमाइश हमने बीते सोमवार को सुनाए, पूरी हो चुकी है आपकी फरमाइश, आगे दूसरे को भी सुनने का मौका दें और फिर अपने अगले सप्ताह के इंतज़ार करें। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: छोटा सा
1: शरी
0: प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे तेरे इश्क में नाचेंगे, राजा हिंदुस्तानी मूवी से और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि नमस्ते सर, मैं अर्चना चौहान गोपालगंज से, और आप कैसे हैं? तो बिल्कुल हम तो बढ़िया हैं। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और कहते हैं कि मैं पहली बार इस शो से जुड़ी हूं। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश लिखा गया है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, काफ़ी प्यारा सॉन्ग है। तो चलिए इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, आगे इंजॉय करते हैं।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग। रेडियो रेमछिम 90.4 FM पे और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। समय जो है समाप्ति का हो गया है, तो अंतिम गाने प्ले करेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और अंतिम गाने के फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है और कल के, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले हैं विकास जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और अंतिम लाइक है आ दूर चले हम, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग है ये भी, और सुनते हैं हम सभी एंजॉय करते हैं। और फिलहाल जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज़ नहीं होना है, समय जो है हमारी पूरी हो चुकी है जिसके कारण इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए लिखा गया है कि छुले आसमान जमीन की तलाश न कर, छुले आसमान जमीन की तलाश न कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। बिल्कुल अच्छी लाइन है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो हाय, कैसे हैं आप सर? मनीष शाह फ्रॉम अमोम अजम से। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है। अंतिम गाने के साथ इंजॉय करना है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा और सुपर हिट सॉन्ग MD 97 दरभंगा बाजीतपुर से मैसेज किए हुए हैं। और आगे मैसेज तो कई आते जा रहे हैं, तो लेकिन देखे तो समय हमारा जो है पूरा हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल बातें होगी, मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें और इंजॉय करते रहें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई U19 और U23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
3: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
1: Us industry ko aur aage badhane ke
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both the nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, that is BLOs, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till the 3rd of August. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava today launched the Intermediate Field Epidemiology Training Program, IFETP, in New Delhi. It is an initiative through National Center for Disease Control to build a highly skilled field epidemiology workforce by training 250 state and district surveillance officers through 14 premier medical and public health institutions. In a social media post, the Health Ministry informed that the program will enhance capacities in disease surveillance, outbreak investigation, public health data analysis and surveillance system evaluation, further strengthening India's public health emergency preparedness and response. Three Indian women boxers won gold medals while 10 others claimed silver medals at the Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta today. In the Under-19 category, Chandrika Pujari won the gold medal in the 51 kg weight class while Prachi claimed gold in the 57 kg category. Gunjan in 45 to 48 kg, Joyshi in 54 kg, Chahat in 60 kg, Anshika in 75 kg, Megha Shyokand in 80 kg and Prachi Tokas in plus 81 kg added silver medals to India's tally. In the Under-23 division, Nisha won the gold medal in the 54 kg weight class, Neetika Chand in 60 kg, Kajal in 65, Muskan in 75 and Priyanka in plus 80 kg won silver medals. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: ना तो तू जरे जेबो
1: ठीक बा चलो।
2: उत्तर बिहार का गौरव,
3: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
3: और अपने भाषा की पहचान,
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
3: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी, मैं लालन ठाकुर बोल रहा हूँ।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
2: मैं भी ठीक हूँ।
1: मौसम कैसा वहाँ का अभी?
2: मौसम ठीक है यहाँ,
1: इधर तो गर्मी पड़ रहा है दिल्ली में।
2: अच्छा, बारिश नहीं हुआ है क्या अभी?
1: हुआ था, अभी फिलहाल बंद है 2-3 दिन से।
2: अच्छा, कोई नहीं, फिर घूमते फिरते जाएगा।
1: मैडम आपका नाम क्या हुआ?
2: भारती।
1: भारती जी, मुझे एक गाना सुनना है।
2: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है, शायद मेरी शादी का ख्याल तेरी मम्मी को आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय को बुलाया
2: है। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
1: ये सबसे पहले चाहते और बाकी जितने भी हमारे रेडियो श्रोता गण है भाई, सभी को और मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों लोग सुनना चाहता है गाने को।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: लाल बोल रहे हैं,
1: क्या हाल चाल?
0: नहीं, सिद्धार्थी जी। क्या समाचार है?
1: मेरा तो ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। फिल्म का नाम है आज का संजू।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है जीजी जीजी वसुदा मंगल लाला।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: और विकास दीदी, दीदी है, गुड़िया है, सीमा है, दादी भी है, आप है, आप
1: ठीक है। गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4 FM।

0: पर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.

0: कभी सुन पाते कभी नहीं सुन पाते, इतना मेहनत करने के बाद हमने सुन पाते फरमाइश किए थे गाना सलमान खान का, कहाँ सुन पाए नहीं सुन पाए।
1: सलमान खान का कौन सा सॉन्ग, वो तो बजा था, हमने तो बजाया था।
0: हमने सुनते नहीं किया, मगरिब का टाइम हुआ था तो बंद करते नमाज पढ़ने के लिए।
1: तो कितने बजे, हम तो मतलब 5 से 7 चलता है,
0: 6 बजे के बाद बंद करते हैं, मगरिब का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने का टाइम होता है।
1: नहीं लेकिन आपका गाना बज गया था, और सुबह में तब सुन लीजिएगा, 10 से 12 बजता है,
0: सुन लेंगे सुबह 12 बजे तक बजता है, मैसेज भी चलता है ना तो वो भी सुनते हैं लोग।
1: 9 से 11 बजे तक चलता है।
0: आज के लिए गाना सुनवा दीजिए,
1: बता दीजिए
0: हिंदी गाना, ज्यादा तो मालूम नहीं है, थोड़ा सा मालूम है बता दे रहा है, समझ में आ जाता है बजा दीजिए, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है।
1: जी बिल्कुल बोलिए, अगर समझ में आता है तो हम भी बजा ही देंगे।
0: कोई नहीं आएगा ना हिंदी, ना मैं चाहे तुझे वही लगाना सुनना है।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: आपको सुनवाएंगे सोनी में हमको, और जितना लोग रेडियो सुनते हैं सभी को सुनाएंगे।
1: हाँ हाँ मेरा तबीयत ठीक है।
0: नाश्ता तो हो गया? बारिश तो खूब हो रहा है अभी।
1: हाँ अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, अभी खुला हुआ है,
0: सुबह में खुल गया। ठीक है बहन, तो गाना सुनवा दे फिर।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, खाना खाके अभी फ्री हुए हैं और जिम में कहीं मैडम जी ने फोन लगा जाए तो लग नहीं गया।
1: चलिए तब तो बढ़िया है
0: जी। कौन भारती जी बोल रही है? सोनी जी बोल रही है।
1: भारती।
0: अच्छा, तो मेरी फरमाइश है, आज पिक्चर का नाम है दलाल और गाने के बोले मर गए फोकट में कोई तो हमको लियो बचा ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
0: जी सबसे पहले आपको है और गजराज सिंह लोधी है और गोपाल ओझा ककवासा से।
1: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
0: धन्यवाद। अरे मर गए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
2: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नाम बता दे पहले अपन।
5: नाम हमारे शांति कुमारी।
6: और कहाँ से?
5: आईटी से।
6: अच्छा,
5: हो गई बन?
6: हाँ, हमारे तो हो गई बराबर।
5: हाँ, हो गई बा। गाना सुना दिए मेरे को ना, तुम मेरे हो ना, ठीक है, हिंदी गाना।
6: अच्छा, और गाना क्योंकि सुना हो के बाद?
5: हाँ, हमारे भैया बड़े, मम्मी बड़ी, बाबू बड़े।
6: अभी तो रिकॉर्डिंग होता गाना शाम के 5 बजे से बाजेला।
5: हाँ,
6: फिर बस फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो।
5: हाँ, 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: इसीलिए दिल से धन्यवाद है भारती जी को। आप सुनाइए कैसे हैं?
1: हम तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास अकादी को आप बोल रहा हूँ की बलरामपुर भी चंपारण से। और सब सुनाइए अपना घर परिवार में और रिमझिमपुरा परिवार कैसे आप लोग?
1: हम सभी ठीक हैं और घर परिवार में भी सभी कोई ठीक है।
0: जी अच्छा रहिए, खुश रहिए। तो आपसे यही कामना है बालाजी के बाबा सुनेश्वरनाथ जी की।
1: तो और बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: जी अभी तो कोयल जैसी मधुर आपकी प्रस्तुति हेलो फरमाइश का कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ और अपने बातें भी कर रहा हूँ, साथ में बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर का तो मौसम अभी ठीक है।
0: जी इधर तो कभी धूप कभी छांव हो रहा है, सुबह में हल्का बारिश हुई है इधर। जी
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी फिल्म का नाम है बम ब्लास्ट और गाने का बोल है मुझे जीने नहीं देती है याद दीदी।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ और दोस्त लोग संजय शाहजी, मोहम्मद अलार जी, दीपक कुमार दास जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, उत्तर कुमार, सोनू कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, अंचल कुमार जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुदान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्य मोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जखमी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनना चाहता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद,
1: वेलकम।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: The phone ring, they watch the head, don't get the hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: आप सोनी जी बोल रहे हैं?
5: नहीं, भारती।
6: भारती जी, बाप बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है जी।
5: हाँ जी, नाम बता दीजिए।
6: मैडम विकास कुमार हिमतापुर से।
5: अच्छा, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
5: बस ठीक है।
6: अच्छा, अभी गोपालगंज में मौसम कैसा हो रहा है?
5: गोपालगंज का मौसम अभी सुहाना है।
6: अच्छा, बारिश वरिश हो रहा है?
5: बारिश हुआ था रात को, अभी ठीक है, नहीं हो रहा है।
6: और बताइए मैडम, खाना वाना हो गया?
5: हाँ, हमारा तो हो गया, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका खाना हुआ या नहीं?
6: नहीं, हम लोग का अभी खाना नहीं हुआ, अभी सुबह का खाना हुआ है, लंच में खाना होगा 1 बजे।
5: अच्छा, सब तो ठीक ही है।
6: हाँ, और सब बढ़िया है मैडम, धान होने लग गया सब खेत में। बहुत पैसा लगता है खेत में धान लगाने में।
5: वो तो है,
6: हम तो आए दिल्ली में, हमको आए हुए 15 दिन घूमने में। आज मेरे को गाना सुनवाइएगा, वो काम सिंगर नहीं है।
5: कौन
6: सिंगर? नहीं, ये मेरा दोस्त से बात कर लीजिए, बात करना चाहता है।
5: दे दीजिए,
6: वही फरमाइश, गाना का फरमाइश वही देगा। हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार,
6: मुझे गाना सुनना था खेसारी लाल जी का।
5: नाम बता दीजिए पहले।
6: मेरा नाम कुलजीत है।
5: और कहाँ से?
6: कुलजीत, मैं यूपी से हूँ।
5: अच्छा, तो क्या हाल चाल है आपका?
6: बात एक बार बढ़िया है।
5: अच्छा जी, चलिए तो बढ़िया होना ही चाहिए।
6: जी मैम, बढ़िया हुआ लाल जी।
5: हाँ हाँ, हम भी ठीक है
6: जी मैम, बढ़िया चाहिए। खेसारी लाल जी का गाना सुनना था।
5: कौन सा सॉन्ग?
6: जी जान गई लू, कितना पानी में बड़ा पहचान गई लू।
5: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
6: हेलो, मेरे दोस्त से आप बात करें? हेलो,
5: पूछ रहे हैं उनसे कि गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं।
6: गाना तो हम लोग अपने दोस्त में सुनेंगे, आपको सुनवाएंगे, जितना रेडियो रेंज सुनने वाला है सब श्रोताओं को डेडिकेट करें। फरमाइश सुन लिए?
5: हाँ सुने हैं।
6: खेसारी लाल का है बेवफाई, इनका मन है, सुनवा दीजिएगा, ठीक है ना? इनके मन पसंद से आज हम तुम अपने फरमाइश अपने खुद बात कर लो और कर दो फरमाइश।
5: जी बिल्कुल, तो इनको गाना प्ले कर देंगे। चलिए फिर,
6: ठीक है,
5: गाना प्ले करते हैं, सुनते सबके साथ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम
0: जी, मुझे गाना सुनना।
1: जी गाना तो सुनाऊंगी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत दूर से आ रही है लग रहा है।
0: जी नेटवर्क थोड़ा इधर उधर हो जाता है।
1: जो
0: गाना सुनना है दिलवाले का, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
1: अच्छा, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: जी सबसे पहले आपको मासूम कौशर कमरन भाई मन भाई मन भाई भाई आयुष भाई प्रिंस भाई लक्ष्मी जी हेमा जी सभी को सुनवाना चाहता हूँ जितने रेडियो रिंगिम सुनने वाले हैं, रेडियो रिंगिम परिवार का।
1: जी जी बिल्कुल, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्ते मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
5: आज भी गाना सुनवा दी।
6: नाम बता दी पहले।
5: परमात्मा कुमार। काला मटिनिया से।
6: तो हाल चल ठीक बानो?
5: ठीक बाबर कुछ सुनाई समाचार।
6: हम नहीं होके ठीक है बानी सन।
5: बारिश गोपालगंज में होता की?
6: बारिश होता, कबो कबो होता, कबो नहीं होता। मैंने दिन में तो एक
5: बार बारिश काल भवे बहुत बिजी हो चुकी है। बारिश बाहर के काम रहे हैं। पंजाब में बारिश काली रात ही आधी मौसम बनल बा।
6: चले ठीक है बाबा।
5: गाना सुनवा दी सुनती राती जाना।
6: गाना बता दी कौन सा?
5: बोले पसंद के बजा दे
6: ना। पर रोगो बताई के पड़ी
5: एक बार हमारा बता के पड़ी।
6: हाँ,
5: बार बार सुनवानी सुनवाई अपने भी है।
6: ना ना, ये पड़ी रोगो बताई, रोगो बताए के पड़ी।
5: सुनती राती गाना बजा दे। वो गाना का नाम बाना है वो इसी अलावा धनिया वगैरह नहीं है कौन सी के साथ जो है वह गाना बजा दे। इसी लाइन में गाना बाजी एक बात वाला कौन लगी।
6: ठीक बाबा चले।
5: हाँ
6: हाँ, तो गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, इतना सुनाइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: आज हम पहली बार कॉल किए हैं।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: मेरा नाम संजय दुबे पड़ेगा, संजय दुबे सासाराम पुणे महाराष्ट्र।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: का नाम क्या पड़ेगा मैडम?
1: मेरा नाम भारती है।
0: तो हम सुनते तो रिंगिंग बहुत दिन से है, लेकिन कोशिश बहुत बार की है लेकिन लगा नहीं, बहुत भीड़ रहता है ना एक नंबर। आज पहली बार में सोचा ट्राई करता हूँ।
1: तो पहली बार में ही लग गया।
0: तो हमें भोजपुरी गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
0: कौन सी का गाना है? गुनगुना दो
1: जी, बोलिए।
0: आई हो दादा की आवाज है, रात भर घूसल रहे झारा वाड़े भीतर बा, रात भर घूसल रहे झारा वाड़े भीतर बा, आई हो दादा गैसन की आवाज है। ये गाना सुनना है।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: जी जी, सबसे पहले आपको सुनाएंगे और जिनके सभी जितने भी सुनने वाले दोस्त हो गए आगे लोगों का बनाएंगे। और हमारे भैया है रामविलास कुशवाहा भैया, संतोष दुबे जी हैं, और एनके विश्वकर्मा सर जी हैं, श्वेता पाठक जी हैं, और मुन्ना भाई मुंबई वाले हैं, और जितने भी सब दोस्त लोग हैं ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोग बुलाएंगे।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैम, नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
5: धन्यवाद जी। मैम कैसे हैं?
6: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: हम भी अच्छे हैं, उम्मीद है कि पूरा टीम अच्छा होगा। भारती मैम बोल रही है?
6: हाँ हाँ,
5: इसी शो में गया रहता है। मैम उस शो में क्यों नहीं आती हैं?
6: आते हैं ना।
5: नहीं, हम तो सुनते हैं, नहीं आती हैं।
6: हम तो सैटरडे को तो पूरा दिन हम ही थे,
5: उस दिन नहीं सुन पाए मैम। और भोजपुरी एक्सप्रेस में आएंगी तो अच्छा लगेगा।
6: भोजपुरी एक्सप्रेस में
5: मैम हम कितने नंबर पे? बहुत है ना।
6: अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
5: जी मैम, सफरोज अली बोल रहे हैं।
6: मुझे तो पता है लेकिन लिसनर लोग को तो नहीं पता है ना। तो और सब बताइए, और सब कैसा है हाल चाल?
5: मेरा नाश्ता हो गया।
6: मेरा तो हो गया, आपने कर लिया है?
5: हम कर रहे हैं, और आपके पास अभी याद आया कि उनसे बात करे, थोड़ा ज्यादा दिन हो गया, 2-3 दिन। बुधवार दिन बात हुआ था। जी मैम, तो मुझे गाना सुनना है। गाना सबको अच्छा लगता है, उस गाने कितने भी तारीफ किया जाए कम है।
6: तो मुझे भी बता दीजिए कौन सा गाना है।
5: गाना है दूधे का सहरा, गाना है ना, वही वाला।
6: और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
5: अभी सुनने वालों को और आपको, सोनी मैम को।
6: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।
5: धन्यवाद।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल चाल यही है कि दुकान पर बैठे हैं, कहीं ग्राहक ना आ जाए।
1: अच्छा,
0: इसीलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। कर्तव्य फिल्म का कोई भी गाना हो सुनवा दीजिएगा।
1: कर्तव्य मूवी का जो गाना बोले थे ना, आज बजेगा।
0: आज बजेगा?
1: हाँ,
0: तो वो तो गाना वो सुना दीजिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
1: ओके,
0: या पीती हूँ गम भुलाने को।
1: हाँ,
0: या आप पिए या हम पिए, जो पिए गम भुला जाएगा। तो यही गाना सुनवा दीजिएगा, डेलिकेट रहेगा आपको और सोनी जी को और हम दो, तीन आदमी हम लोग सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं।
1: चलिए फिर गाना प्ले कर देते हैं, सुनते रहिए सब।
0: हाँ, एकदम एकदम कीजिए जल्दी। हाँ, थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एमजी 90.4 FM में।
3: नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते,
3: भोरे से यहाँ बोल रहे हैं।
2: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
3: अच्छा है, अपना बताइए कैसे है?
2: हम भी अच्छे हैं।
3: ठीक है, अच्छे से काम है।
2: तो क्या कर रही हैं अभी?
3: अभी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा फोन लगेगा।
2: चलिए, तब तो आपका फोन लग गया ना।
3: अभी सब ठीक है? नाश्ता हो गया?
2: हाँ, नाश्ता हो गया।
3: मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंड है।
2: और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा आज?
3: गाना सुना दीजिए उदित नारायण के, कोई भी गाना, अच्छा गाना।
2: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
3: जी मैडम,
2: नमस्ते।

0: जी बहुत स्वागत है रेडियो रिंग 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम लोग बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा, नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम तो साईं पलक है।
0: अच्छा,
1: और सब बताइए मैम, और सब आपका अच्छा है ना?
0: हाँ हाँ,
1: मैम आपका नाम श्रुति है?
0: नहीं, भारती।
1: अच्छा भारती, पहले श्रुति थी मैम। चलिए, नाश्ता पानी हो गया है?
0: हाँ, नाश्ता पानी करके आते हैं घर से।
1: मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम हमारे यहाँ अभी तो ठीक है, बारिश हुआ था रात को, तो अभी मौसम ठीक है।
1: चलिए अच्छा,
0: कौन सा गाना सुनिएगा
1: मैम? सुना दीजिएगा बरसात वाला, टिपटिप बरसा पानी।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: सभी लिसनर को डेडिकेट है और आपको भी, सभी आर्जे को डेडिकेट है।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी,
0: तो
1: जो छूट गए हो सभी को, सभी लिसनर को।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी मैम, आपसे आपका तो मोबाइल बड़ा रेटिंग बता रहा था,
0: क्योंकि अभी कॉल बहुत
1: लाइन में अभी बिजी चल रही थी।
0: हाँ हाँ,
1: तो उस वक्त से बैठ कर लगा रहे थे, लगा से बिजी बिजी आखिरी में लगा है।
0: इधर कॉल थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लास्ट चल रहा है, और उधर सभी लोग लगातार कॉल करते हैं, तो
1: जिसे लग अच्छा उससे लग जाएगा। चलिए अच्छा,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।
1: सुनिए गाने, मतलब गाने का समय कितना बजे? पहले हम लोग सुन रहे थे, अब हम लोग भी बिजी रहते हैं, लोग मतलब नहीं सुनते हैं लोग। गाने का मतलब टाइमिंग?
0: अच्छा, गाने का समय है 5 से 7 शाम को, और सुबह में सेम रिपीट होता है।
1: योर वॉइस, योर चॉइस।
0: योर वॉइस अभी चालू हुआ है, 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा।
1: योर वॉइस?
0: हाँ,
1: पहले चलता था 10 से 12।
0: 10 से 12 सेम अब रिपीट होता है, यही हेलो माय चॉइस जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो सेम वही बजता है।
1: ठीक है,
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।
1: याद कीजिएगा मैम।
0: जी
1: याद कीजिएगा हमको।
0: जी जी बिल्कुल याद रखेंगे।
1: ओके ओके, बाय टाटा।
0: टाटा।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, नमस्ते।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: इसके दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो सुशासन के नाम सोना मंत्री चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
3: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: हाँ, मेरा हाल खबर तो बिल्कुल बढ़िया है। आधा सही आप ऐसे है, आपको रेडियो रिमझिम से फोन पे लग रहे हैं।
3: मैं भी ठीक हूँ और रेडियो रिमझिम के पूरे परिवार भी ठीक।
2: चलिए, बारिश हो रहा है कल से तो हम लोग बारिश से मजा लिए हैं। आप बताइए, कोई बारिश हो रहा है नहीं?
3: इधर तो रात में बारिश हुआ था, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है।
2: रात में
3: हुआ
2: था? हाँ सर, अब हम लोग बारिश हुआ था। ये बढ़िया बात है, अच्छा है। जो भाई के काम पे ले गया वही बहुत है, बढ़िया।
3: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
2: आज गाना सुना ये मेघा रे मेघा कहते हैं गाना, वही सुना दीजिए।
3: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
2: डेडिकेट में सबसे पहले आपको वहाँ पर रेडियो संपन्न परिवार को और दोस्तों हो गया कहना था मामा साबी जी, गुमा जी, सुपिन कुमार जी, राम लखन कुशवा जी, कृपा गांव से अजीत कुमार कला बैकुटम से नरेश सोहनी, दीपक दास, उदयभान ठाकरे, जिन्ना साहब, धर्मेंद्र जी, हमारे नाम से जाने तक विशेष को राजेंद्र यादव भारती कंतलाल गौतम तमाम खास करके मोहम्मद अंसारी मजवलिया के उनको रहते हुए आपसे विदा लेंगे। नमस्कार
3: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: क्या हो रहा है अभी? तो श्रीराम से आ रहे हैं तो कौन लगा रहे हैं, तो खाली व्यवस्था लगा रहे हैं।
1: कोई नहीं, देर से पेट लग ही गया।
0: और सब बताइए,
1: और सब तो ठीक है।
0: सुनील दी कहाँ पे है?
1: सुनील दी वो भी इधर ही है, काम में लगी हुई है अपने।
0: मनोरमा दीदी
1: वो भी उधर ही है।
0: वो तो चलेगा ना?
1: हाँ, सो चलेगा।
0: बने और सब बढ़िया है। मौसम कैसा है?
1: मौसम तो ठीक है।
0: हमारे इधर थोड़ा थोड़ा धूप हुआ है।
1: अच्छा, इधर भी बारिश खुला हुआ है। अभी बाहर तो नहीं गए देखने की कैसा है।
0: में बारिश हुआ है क्या उधर?
1: नहीं, रात से हो रहा था तो सुबह में खुला है। धीरे धीरे हो रहा था सुबह में भी, लेकिन अब ठीक है।
0: नहीं, यहाँ पे तो रात ही के बरसा है, सुबह में नहीं बारिश हुआ है। धान रोपनी हो गया अपना?
1: हाँ, अपना हो गया सब।
0: चलिए ठीक है। कुछ दिन गए थे गोपालगंज, मतलब 3-4 दिन हो गया। गए चलाने के लिए गए थे उधर। गाने कर रहे हैं,
1: बता दीजिए।
0: कमल सिंह का व्यवसाय सॉन्ग कोई भी बजा दीजिए, बढ़िया ये बजा दीजिए, हो ही ना प्यार दोबारा।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: सबसे पहले आपको सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, सोनू सर को, अक्षर सर को, डायरेक्टर सर को, और जितना रेडियो सुन रहे सब लोग का, और मेरी बहन है करिश्मा, उसको भी।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: फिर
0: बात होगा।
1: हाँ, रेडियो 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Regional.
1: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, रंग नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, ऐसन तीर है जे दिल के पार हो जाला।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
2: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: VCD and cassettes. Only on Chanda Cassettes.
1: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: VCD and cassettes only on Chanda Cassettes.
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।